0: देखिए ड्रामा सीरियल एक भूल रोजाना रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: प्रोग्राम हेरूं था हिकु कॉलर जी तरफ़ ॾिसूं था कहिड़ो कॉलर असां सां हिन वक़्तु लाइन ते मौजूदु आहे अस्सलाम वालेकुम जी अदा साईं केरु किथां खां जी अदा हाफ़िज़ सामिल साहब कहिड़ा हाल आहिनि ठीकु आहियो जी अदा छा था जेको आहे ईद जे हवाले सां चवणु चाहियो हा सही आहे गोश्त वोश्त खाधी न अच्छा हाफ़िज़ साहब अॼु मां तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि लाइव थो चवां चालाकियूं इहे ठगियूं न कंदो कर मिठा तुंहिंजो आवाज़ असां सुञाणे था वञूं हाफ़िज़ लखमीर साहब ख़ुशि आहियो ठीकु आहियो तबियत सही आहे न तव्हांजी हलो था हिकु ॿिए कॉल करो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम बेड़ा खां साईं फ़क़ीर साहिब
0: साईं साईं मुंहिंजो कहिड़ा हाल आहिनि ठीकु आहियो दा माशाला माशाला ज़बरदस्त साईं तव्हांखे असां स्पेशली भलीकार चऊं था ईद जा आख़िरी ॾियारो आहे कीअं गुज़रियो तव्हांजो केरु मुबारक अलाह कंदो इनशाला मथी ईद ते बि पाण वरी शो कंदासीं वरी तव्हां बि असांजे शो में शामिल थींदा ऐं उमेद ते दुनिया क़ाइमु आहे जी जी बिल्कुलु वॾियूं महिरबानी वॾियूं महिरबानी मौला तव्हांखे ख़ुशि रखंदव बिल्कुलु सही आहे बिल्कुलु सही आहे हाज़िर साईं तव्हांजी इहा जेका सजेशन आहे तव्हां जेका इहा तव्हांखे तजवीज़ ॾेई रहिया आहियो इहा तजवीज़ तव्हांजी असां अखियुनि ते रखी ऐं इनशाला जेको जुमे वारो मुंहिंजो शो थींदो आहे नेटवर्क शो उन में बि कॉल कंदासीं कॉल वारो सिस्टम शुरू कंदासीं उन सां गॾोगॾु जेके लीला जा प्रोग्राम थींदा आहिनि उन्हनि में बि कंदासीं ॿियो हुकुम भाउ आमीन आमीन आमीन अलाह सां ख़ुशि कंदो पंहिंजे दोस्तनि खे शामिल कयो था आमीन आमीन पंहिंजे दोस्तनि खे शामिल कयो मुमताज़ मेमण मोरे खां ठीकु आहे दादा वॾी महिरबानी मौला ख़ुशि कंदो तव्हांखे आबादी जो थैंक यू थैंक यू थैंक यू त मुंहिंजा मिठा साईं तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था बज़री आहे SMS बि त SMS बि आहिनि ऐं मां लैला खे चवंदुसि त लैला इहे जेके मैसेज आहिनि इहे तव्हां असांखे असांजे लिसनर जी ख़्वाहिश आहे त असां इहे जेका आहे न मैसेज असांजा लैला पढ़े
2: जी जी बिल्कुलु ऐं पढ़ंदमि विलेज मल्हार खान खां मोरो हाफ़िज़ अताउल्ला बोरो खां जॾहिं असांखे मैसेज कयो आहे त चवंदा अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम ऐं उन्हनि असांखे ईद मुबारक चई आहे असर गुलाब खान भेण खे ऐं लीला खे ऐं उन्हनि चयो आहे त असांखे सॉन्ग ॿुधरो प्लीज प्ले मुमताज़ लाशारी जो
0: मुमताज़ लाशारी जी आवाज़ में अदा मूरा साहब बिल्कुलु अताउल्ला साहब तव्हांखे असां ॿुधाईंदासीं सॉन्ग तव्हांजे पसंदि जो ब्रेक ते हलंदासीं ब्रेक खां पोइ अची करे तव्हांखे ज़रूरु ॿुधाईंदासीं
2: फौजी पठाण खां खोसो जन असांखे मैसेज कयो आहे त अस्कर सुमरो फुलनि वारो ऐं फौजी अमानला सुमरो के ऐं
0: जी हा उन्हनि जे लाइ सलाम मोकिलिया आहिनि सलाम उन जे लाइ मोकिलिया आहिनि दोस्त वॾी महिरबानी अदा फौजी पठाण साहब तव्हांजी अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखंदो महिरबानी तव्हांजी मुंहिंजा प्यारा ऐं तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थियो था या तव्हांजी तमामु घणी महिरबानी आहे त असां सां ॻाल्हाए मिल्क ख़ासि खां अब्दुल्ला महर शुएब महर ऐं चवंदा अस्सलाम वालेकुम आरजे गुलाब खान ऐं आरजे लैला ऐं प्लीज़ असांखे सॉन्ग ॿुधायो अहमद मुगल जो अदा जंहिंजो ही ॿियो मैसेज असांजे प्रोग्राम में आयो आहे अदा ब्रेक जो टाइम आहे ब्रेक खां पोइ तव्हांखे तव्हांजे पसंदि जो सॉन्ग ज़रूरु ॿुधाईंदासीं
3: कुर्बा का पैगाम है इसार मोहब्बत और भाईचारे का आपको और आपके अहले खाना को जिए सखर

अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान सां मुआहिदे जो मुसविदो इसराइल समेत इतिहादी मुल्कनि ॾांहुं माणे छॾियो। बरतानवी अख़बार गार्जियन मूजिब मसविदे में ईरान खे संदसि ज़ब्त थियल 12,000 अरब डॉलरनि जे असासनि जी पहुच ॾिनी वेंदी। मसविदे में आबनाए हुर्मुस माबूल जीअं बहाल करण जी तजवीज़ बि शामिल। बरतानवी अख़बार मूजिब चीन चाहे थो मुआहिदे में हतमी मंज़ूरी गॾियल क़ौमनि मां वरिती वञे।

अमेरिका ऐं ईरान मुआहिदे जे वेझो ज़रूर आहिनि, पर अञा ताईं मुकमल मुआहिदे ताईं न पहुता आहिनि। अमरीकी नायब सदर जे डी वेंट चयो आहे त अमरीका ईरान खे एटमी प्रोग्राम तां पोइ ते तिकण जी पोज़ीशन में आहे। पक सां चवणु ॾुखियो आहे त सदर ट्रम्प मुआहिदे ते कॾहिं सही कंदो।

ईरानी सदर मसूद पजिश्कियान पारां मुआहिदे ताईं पहुचण ते पाकिस्तान जी कोशिशनि जी वखाण। मसूद पजिश्कियान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ते लिखियो आहे त मुआहिदे बाबति पाकिस्तान जी असराइती कोशिशनि ते थोरायतो आहियां। इंसानी हमदर्दी वारे मौक़िफ़ ते मलेशिया ऐं मुआहिदे बाबति पाकिस्तान जी कोशिशनि जी वखाण।

छह महीना अग शुरू कयल जंग जी कीमत अवाम अदा करे रहियो आहे। जंग हाणे ख़तम थियण घुर्जे। न्यूयॉर्क जे मेयर ज़ोहरान ममदानी सोशल मीडिया ते बयान में चयो आहे त कांग्रेस जी मंज़ूरी खां सवाइ शुरू थियल जंग में अवाम जी बजट मुतासिर थी रही आहे। जंग सबबि अमरीका में पेट्रोल ऐं ॿियनि शयुनि जे अघनि में वाधि थी।

सदरहें वज़ीर आज़म पारां गडि॒यल क़ौमनि जे अमन दस्तनि जे आलमी ॾींहं ते पैगाम। सदर आसिफ अली सरदारी चयो त आलमी अमन लाइ क़ुर्बानी ॾींदड़ 183 पाकिस्तानी अहलकारनि जी बहादुरी खे सलाम पेश कयूं था। पाकिस्तान 60 वरियनि खां UN अमन मिशन में नुमाया किरदार अदा करे रहियो आहे। कश्मीरियुनि जी उमीदनि मूजिबि कश्मीर मसइलो हल कयो वञे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त हीउ ॾींहुं सॼी दुनिया में इंसाननि जे तहफ़ुज़ लाइ सियासी अज़म ऐं माली मामलनि जी अहमियत उजागर करण लाइ रखियो वियो आहे। क़ौमी फ़ख्र जी ॻाल्हि आहे त पाकिस्तान गडि॒यल क़ौमी जे अमन मिशन में पंहिंजो हिसो आहे। रियासती ऐं गैर रियासती जंगनि जे तरीक़ा तब्दील थी चुका। अमन दस्ता हाइबर ख़तरनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। आलमी अमन लाइ जानियूं क़ुर्बान कंदड़ ब्लू हेलमेट्स खे पाकिस्तान पारां भेटा पेश। ISPR पंहिंजी पधराई में ॼाणायो आहे त आलमी अमन लाइ मुसलसिल ऐं इज्तमाही क़ुर्बानी जी ज़रूरत आहे। 2,87,000 पाकिस्तानी अमन मिशन में पंहिंजूं ख़िदमतूं सरअंजाम ॾेई चुका आहिनि। UN अमन मिशन में 183 बहादुर पाकिस्तानी अहलकार शहीद थिया। साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल प्रोपेगेंडा ऐं मौसमियाती तब्दीलियूं अमन लाइ नवां चैलेंजेस बणिजी चुकियूं आहिनि। पाकिस्तान जदीद इंटेलिजेंस ट्रेनिंग ऐं क्लाइमेट फ्रेमवर्क ज़रिए अमन में सीड़पकारी करे रहियो आहे।

शिकारपुर भरसा गोठाड़न का मोटरसाइकिल पुर करण की कोशिश दौरान पुलिस पहुंचने से मुकाबलो फायरिंग में डुहारी कादरू कमालाणी मारजी वो पुलिस जो चवण है त मारजी वियल डुहारी वटा पुर थियल मोटरसाइकिल टीटी पिस्टल हथ आयो है लाश अस्पताल मुंतकिल कर वधिक जांच शुरू कई वही है।

धंधे में पाणीअ जी खोट बरकरार। उपावड़ में वाहन ऐं शाखुनि में पाणी, नौजण ख़िलाफ़ आपातकार रस्तनि ते निकिरी आया। रोहड़ी जे ॻोठ अछियूं कुबियूं जे रहवासियुनि जो पीअण जे पाणीअ लाइ एहतजाज। उपावड़ो जे सोनड़ माइनर, तिलवारो माइनर।

0: डहर वाह ऐं ॿियनि शाखनि तोड़ी वाहन में पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ आबाद कर मीरकोश रेगुलेटर वटि धरणो हयो। लोहड़ी जे ॻोठ अछियूं कुबियूं जे रहवासियुनि बि पीअण जे पाणीअ जी शदीद खोट ऐं बिजली जी ऐलानियल लोड शेडिंग ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हयो ऐं नारेबाज़ी कई।
1: अॼु तुंहिंजो तव्हांखे ज़हर आयो तव्हां पाण खाधो मुड़ुसु ॾिनो
2: मुड़ुसु ॾिनो भॼी वियो आहे।

ॿी शादी खां रोकड़ ते जवाबदार मुबैना तौर पंहिंजी साल खे ज़हर ॾेई छॾियो। औरत घर थी चुकी हालत में अस्पताल मुंतकिल, दर्स रोड थी रवासण। मुसमात जमीला अस्पताल में ॻाल्हाईंदे चयो त संदसि मुड़ुसु मोहम्मद जतो ई ॿी शादी करणु पई चाहे। रोकड़ तां हुन मूंखे ज़बरदस्ती ज़हर पीआरियो आहे। वाई पांदी भरिसां पीउ साॻी क़िस्म जो वाकियो। घोट पीर बख़्श लाशारी में मुड़ुसु फ़हीम ब्रह्माणी ॿी शादी जी इजाज़त न ॾियण ते मुबैना तौर ज़ाल खे शहमीरा खे तशद जो निशानो बणाइण बाद बेटरी जो पाणी पीआरे छॾियो।

नीरपुर माथेलो में एक हफ्तों अग जेड़े में मुबैना तौर मारजी वियल गोठाने के वारिसन जो एसएसपी ऑफिस अगैं धरणो वारिसन हफ्तों गुजरण बावजूद पुलिस अकबर समय जो जे कातिलन की गिरफ्तार ना है क्यों कातिल गिरफ्तार कर इंसाफ कर वे सिटी भरसा रोहड़ी केनाल में बुडी वियल नीगर जो लाश 20 कलाकन बाद हथ नीगर एहसान खास खेली गुजरियल ढीह विच ते बुडी वियो हो शदादपुर।

0: अफ्रीका इवेंट में पंहिंजी मुहिम जी शुरुआत 17 जून ते अलजज़ायर खिलाफ कंदो। फीफा वर्ल्ड कप 11 जून खां 19 जून ताईं अमरीका, कैनेडा ऐं मैक्सिको में खेॾियो वेंदो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: शदीद गर्मीअ सबब शहरनि खे गुज़ारिश कई वञे थी त सुबुह 11 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं ख़ासि एहतियाती तदबीरूं अख़्तियार कनि। गैर ज़रूरी तौर ते ॿाहिरि न वञो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो ऐं उन दौरान शदीद जिस्मानी कम खां पासो करियो। ॿारनि, बुज़ुर्गनि ऐं बीमार माण्हुनि जो ख़ासि ख़्यालु रखो। वधीक पाणी पीओ ऐं महफ़ूज़ रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक ऐं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जे तावन सां पेश कयो वियो।
3: जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिलि जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, फालेज, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
4: आप सुन रहे हैं
5: GAFM
4: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: बिल्कुल बताएं तुम्हें अहमद मुगल जो जबरदस्त गाना तहां चलाए
1: दर्द
0: वालों से। ओके ओके ओके ओके ठीक है, थैंक यू सो मच दादा, थैंक यू सो मच। बिल्कुल जनाब, दर्दों वाले गाने सुन रहे हैं इतनी गर्मी में भी, और हम चाहते हैं कि आपको चिल करें, और आप कहते हैं नहीं दर्द वाला गाना सुनाए, क्योंकि गर्मी में और दर्द हो जाए तो फिर मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन आपकी फरमाइश है सर आंखों पर, हम आपको दर्द वाला गाना सुनाएंगे अहमद मुगल का, और लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ले भाई, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, इस्पा भाई ईद मुबारक।
0: खैर मुबारक। मुझे लगता है शिकारपुर से हमारे भाई हमारे साथ, फारूक भाई।
1: जी जी बिल्कुल, कैसे हैं आप? ठीक हैं
0: अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए फारूक भाई, आपको हमने याद किया हुआ, आपकी आवाज हमारी समातों से टकराती है।
1: माशाल्लाह, ये मोहब्बत है आपकी,
0: यही तो मोहब्बत
1: आपकी। ठीक है माशाल्लाह,
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक है,
1: मैं भी ठीक ठाक, दुआएं हैं आपकी, और आप सुनाएं?
0: मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे गुजरी आपकी ईद? आपको ईद मुबारक।
1: माशाल्लाह, रात को आपका जिक्र हुआ था, मेरा बचपन का दोस्त है, वो भी पहले फिल्म सुना करता था बहुत ज्यादा।
0: अच्छा,
1: तो माशाल्लाह उसको शिकारपुर में शॉप है कपड़े की।
0: जी जी।
1: तो ईद जो मिले थे तो हम कुल्फी खा रहे थे, फिर उसने पूछा यार आजकल सुन रहे हो? फिर मैंने बोला यार कभी कभार सुनता हूँ। दादा मेरी बात अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भाई से हो चुकी है कई बार, बोले वाकई इस बार। तो मैंने बोला भाई माशाल्लाह वैसी आवाज है जैसे पहले थी।
0: थैंक यू सो मच यार, आप हमें सुनते हैं और इतना अप्रिशिएट करते हैं, आप जैसे प्यारे भाई जो है बहुत ज्यादा मतलब रिस्पेक्ट के हकदार हैं, और आप जीते रहें। ये बताइए कि आपकी ईद कैसे गुजरी मेरे भाई?
1: माशाल्लाह इस बार भाई, यकीन माने इस बार हमारी ईद ऐसे ही लग रहा था जैसे कोई ईद ही नहीं है।
0: क्यों?
1: क्योंकि दो वाकयात हुए थे, एक मेरी कजन का इंतकाल हुआ था, एक मेरे दोस्त की नानी का, तो इस वजह से हमने न्यू ड्रेस ली नहीं थी।
0: अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं जनाब, इस तरह की तो हैपनिंग्स हो जाती हैं, और जिसने आना है उसने जाना होता है। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मकामत फरमाए दोनों खातून को। तो आप ये बताइए कि आज आप हमारे साथ हैं तो आपके शहर में गर्मी का क्या सीन है?
1: इस बार भाई ना पूछे पूछी बात है, बहुत ज्यादा गर्मी है, क्या बताऊं आपको, सर से लेके पांव तक पसीने आ रहे हैं।
0: वाकई ऐसे ही हाल हुआ पड़ा है हर जगह पर, लेकिन जो दो दिन से शिद्दत से गर्मी हो रही थी ना, अगर उसको देखा जाए तो आज की गर्मी में थोड़ी सी नरमी है।
1: नरमी है लेकिन
0: गर्मी है,
1: धूप की वजह से हब तो ज्यादा हो रहा है।
0: हाँ हब ज्यादा हो रहा है, गर्मी है लेकिन फिर नरमी है, फिर भी गर्मी है भाई।
1: हाँ बिल्कुल।
0: फारूक भाई ये बताओ, अहमद मुगल प्ले कर रहा हूँ, किसका नाम कहना चाहोगे?
1: सबसे पहले आपकी पूरी टीम को
0: जी जी,
1: अली रजा मुगल, इमरान अली मुगल, अली दिनो मल्ला
0: सही,
1: और नईम फिर नईम मंगरो, और उसके बाद रियाज शहर, बाकी जो भी सुने हम सबको मेरी जाने से सुना ले।
0: वालेकुम अस्सलाम फारूक भाई, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, गर्मी से बचाइएगा अपने आपको।
1: ओके ओके, थैंक यू यू, और आप भी।
0: थैंक यू ब्रदर, थैंक यू,
1: वेलकम वेलकम,
0: थैंक यू। हमारे साथ जनाब बहुत प्यारे से फारूक भाई फ्रॉम शिकारपुर, अभी हमें कॉल कर सकते हैं जनाब 03000113488। ईद का तीसरा दिन और फिर जुम्मे का दिन भी। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम,
0: केर था सा सबनी सा गर ईद मुबारक हुजे बा
2: साईं, तमाम जे वजन ने तमाम जे पूरी टीम के गिदाई जी मुबारक वजन पर।
0: थैंक यू सो मच। केर पे गलायो, किथा पे गलायो दा?
2: मेरापुर गांव कुशेत छपत।
0: मेरापुर खां मुर्शेद अहमद भाई, तमाम मुझे ख्याल में कल भी आया हुआ है ना?
2: हाँ बाबा जी जी,
0: वेरी गुड वेरी गुड। टे ओडी ता जो किए तो गुजरे ईद जो
2: साईं? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र खुदा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जा करम मदीने आले साईं जा।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त आईं, तमाम आज भी प्रोग्राम में आया हो माशाल्लाह, तमाम लकी आयो तो जी ता जी काल लगी वई है। यो बता अहमद मुगल तो प्ले क्या कैंसिल नाले करना चाहो दा
2: सर? यो तमाम जी आईं तमाम जी बोल टीम जे नाले या कुछ दोस्त सब आईं?
0: जी जी जी। अच्छा मके कोई गानो तो गुनगुनाए बुधायो थोड़ो यार, ता जी आवाज मके सुरीली पे लगे
2: गानो।
0: हाँ, कोई थोड़ो घणो एकड़ी लाइन
2: ए तो मुझे आवाज भलो सुनाए
0: पर तवा गायो खबर पे जी दी।
2: अच्छा
0: जी जी जी,
2: रहमान मुगल सर?
0: हाजिर हाजिर हाजिर, रहमान मुगल जो बताया कोई मसला ना है।
2: रहमान मुगल जो गावा

0: ऊंधा यही ना
1: माशाल्लाह
0: माइक जे करीबाना नहीं लाए
1: जी
0: थैंक यू तमा चो तेरी आवाज में बड़ा दर्द है छोरे थैंक यू सो मच खुर्शीद भाई थैंक यू सो मच बिल्कुल जितने हमारे साथ खुर्शीद भाई बहुत प्यारे से थे और बेरापुर से उन्होंने कॉल किया है मैंने भी आज गाना गाया है अहमद मुगल का बल्कि रहमान मुगल का असा रोई रोई खिलायो से जन के अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम
0: हां जी केर असा सबनी से गाड़ी मुबारक हो जेब
2: खैर मुबारक इस बात बाब अब्दुल वाहिद जतोई तो गलाया गोटाई सामान कान जतोई कहां
0: अब्दुल वाहिद जतोई साहब क्या हाल चाल था
2: खैर अल्हम्दुलिल्लाह काम दायो ता जा केड़ा हाल ने खुश आयो तबीय सही आ
0: सब फा मजे में यो बुधायो वाजिद भाव के गानो शानो बुधायो पांजी आवाज में यार अजी साहब
2: गानो सर असा के कोने जो आ गाना बुधायो ता
0: अच्छा सही सही सही तो पो तमा यो बुधायो ता जे गोठ में की गर्मी थी पए
2: गर्मी ताणी मौसम गर्मी जी गर्मी तरह एडी बराने एडी कानी पो आने पछा लगा पयाने सारे होता कने में पया हूं
0: माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त माना जिंदगी सुठे नमूने ताजी गुजरी रही है गर्मी भी एंजॉय था के सर्दी भी एंजॉय था के हो ये ना
2: जी जी जी
0: अच्छा वाजिद भामा आने अहमद मुगल तो प्ले किया कें जे नाले था करना चाहो
2: बस जेके दोस्त भाई रब दी रहा ने सबनी के अब्दुल वाहिद तरफा अस्सलाम वालेकुम
0: वालेकुम अस्सलाम खुश रहो हमेशा वाहिद भाई थैंक यू अल्लाह हाफिज हमारे साथ प्यारे से वाहिद भाई जनाब और अपनी औताक में वो आज के दिन को भी इंजॉय कर रहे हैं और कहते हैं जनाब गर्मी सर्दी सब सीजनल है तो जनाब आते ही हम इंजॉय करते हैं और होना भी यही चाहिए कि हर सीजन को हर दिन को इंजॉय करते रहना चाहिए अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम चलिए जनाब लगता है हाँ अस्सलाम वालेकुम आ गए अस्सलाम वालेकुम क्या बात है हमारे साथ आ चुका है इरफान भाई खबड़ी भिट खा ये ना
3: बिल्कुल अशाक भाई कैसे हैं आप ठीक हैं आपको ईद का तीसरा दिन और आखिरी दिन बहुत बहुत मुबारक
0: थैंक यू बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी ये बताओ तीसरा दिन गुजर कैसा रहा आपका
3: अशाक भाई मैंने कहा कि आपको मुबारक दे दूं ऐसे मैं शुरू हो जाऊंगा तो फिर
0: भूल जाऊंगा
3: आपको
0: नहीं
3: मेरा जो बंद आपको अपने का बटन है ना वो अभी खराब है
0: आपका तो शुरू से खराब है जब से आप आए ना मेरा प्रोग्राम जब से शुरू है आपका ऑफ का बटन ही नहीं मिलता
3: तो अशाक भाई
0: जी जी
3: आज भी वही सीन हुआ कि कॉल पिक नहीं हुई और आपने सलाम कर दिया तो मैंने कहा कर अल्लाह करे कि मेरी पिक हो जाए ना हो कि मैं वो ही सवाल कर रहा हूँ भाई ये आज भी फोन को बहुत सारी गर्मी लगी है
0: किसको लगी है गर्मी सॉरी फोन
3: को
0: असल में देखें जितने भी ये डिजिटल आलात होते हैं ना ये जो फोन हो गया कंप्यूटर हो गया मिक्सर हो गया ये बहुत गर्मा गर्म हो जाते हैं जब गर्मी होती है तो इनका भी मूड खराब हो जाता है ना जब हमें गर्मी लगती है तो हमारा भी मूड खराब हो जाता है
3: बिल्कुल ये ठंड में भी इसका मूड खराब हो जाता है हम इंसानों की तरह और गर्मी में भी इनका मूड खराब और कभी कभी तो ऐसे भी जैसे हमारा मूड ऑफ होता है ना
0: बिल्कुल
3: और मुंह पे 12 बजते हैं तो इनके भी मुंह पे कभी कभी 12 बजे होता है
0: इनके मुंह पे 12 का इनके मुंह पे 13 भी बजते हैं 14 भी बजते हैं और 15 भी बजते हैं अहमद मुगल आपका बहुत फेवरेट गाना मैं प्ले करने लगा आपके बहुत फेवरेट सिंगर का किसके नाम करना चाहेंगे
3: कौन सा सॉन्ग चल रहा है
0: चल नहीं रहा अभी वो मैंने लगाया है वो खुद गर्ज सा प्यार करे
3: अल्लाह अभी तो ईद चल रही है अभी तो इसके सॉन्ग ना सुनाओ
0: नहीं वो बिरोही भाई आए थे उन्होंने कहा कोई दर्द वाला गाना सुनाओ अब मैं उनको चुटकी तो यहाँ से काट नहीं सकता था कि उनको दर्द फील हो तो मैं कोई ऐसा
3: सुनोगे ना तो अहमद मुगल ये बड़ी पुकार करेगा मौला साईं तुझी दुनिया में ये भला तो थींदो
0: ये अच्छा गाना
3: प्यार वफा के बदले में तो दर्द रुगो तो मिलंदो
0: मरी व्यासे बाप होता पता गर्मी बदल दी आप किसके नाम करना चाहेंगे ये गाना
3: ईद जे दिन ते हेरो कलाम बहरहाल मुझे फेवरेट सिंगर
0: Exactly, मैं भी बहुत सुनता था इनका एल्बम आया था वो

0: नहीं,
1: अहमद मुगल रोके सॉन्ग गाता है
0: हाँ?
1: और वैसे वो खुश होता है, हम उसका सॉन्ग जब भी सुनते हैं तो खुद रोते हैं।
0: हाय हाय, मत रोना,
1: मेरे बार रोता है, हम बार बार रोते हैं।
0: क्या करती हुई, मत रोना मत रोना, हंसते मुस्कुराते रहो और यूं ही खिलते खिलखिलाते रहो।
1: शायद मुझे लग रहा है कि ब्रेक के बाद सॉन्ग चले होगा।
0: नहीं, अभी कर दिया मैंने, देखेंगे आपके पीछे से आ रही आवाज।
1: बिल्कुल, मैं सलाम दूं दोस्तों।
0: जी जी जी बिल्कुल,
1: सलाम सिस्टर मिसेस अली फौजिया फरजाना राय कुमरो मंता कुमरो हुसैन बच्ची विस्तरो फाइन विस्तरो आखिर गुलाम अहमद सांबल लुकमान चाचर नजीर मंगरे बचन तमानी जेके दोस्त बनता सब शेर पनली से वपारा इलाही सर।
0: वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, थैंक यू
1: जी।
0: हमारे साथ इरफान भाई और बरोई भाई की फरमाइश पर हम को चला रहे हैं अहमद मुगल का सुपर हिट गाना, सुनिए और एंजॉय कीजिए।

0: रजा के पुर मुसरत मौके पर जीएसएकर एफएम 88 की जानिब से आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद।
1: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ, जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास। चेहरे के दाग धब्बे, खेल महा से और बेजानपन, आप सबको कहे अलविदा। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम चेहरे की जिल्द को दे नया निखार, नरमी, ताजगी और कुदरती चमक। सावली
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट, हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: अंगेज जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिलि जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, बारन जो देर सा हलन, फालेज, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: डिस्टर्ब थी थी आप जी जी हाँ बस अचे थी थोड़ी घनी आवाज ताजी ताजो नालू छा यादा हेलो I'm sorry अदा तवाजी आवाज न पी अचे मुखे तवा भी असंगी कॉल करे सको था 03000113488 ते तवा बीर भी असंगी कॉल करे सको था अगर तवाजी सही प्रॉपर सिग्नल नथा अचन था अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम
0: के रदा सा सबनी सा गड आई ईद मुबारक
1: खैर मुबारक आवा के फुल सालों में अच्छा बात बात नारो आदि
0: सवार बच्चे शंभानी साहब केड़ा हाल चाल है ताजा ईद जो ॾींहुं बि आहे वरी जुमो बि आहे त तव्हां कीअं इंजॉय था कयो पंहिंजे ईद जे ॾींहं खे गर्मी हाणे काॾे वञे गर्मी जो सीज़न आहे त गर्मी त थींदी न दादा शाम त थधी थिए थी थोरी घणी हवा बि हले थी त पोइ शाम जो निकिरी अचो काॾे घुमण फिरण जे लाइ त जीअं तव्हांजो माइंड बि फ्रेश थी वञे मां हिकिड़ो गानो ॿुधाइण वारो आहियां तव्हांखे गुलाम रसूल जेहो जी शायरीअ में ऐं ज़बरदस्त ट्रैक आहे जिन में नज़र बद जो ज़िक्र बि थियो आहे त माना नज़र न लॻी वञे तोखे उहो कंहिंजे नाले ते करणु चाहियो जलाल मां बिल्कुलु ॿुधाईंदो अञा त ॾेढ कलाक पियो आहे जलाल जो जेको तव्हांखे वणे वाह वाह जबरदस्त जबरदस्त तमामु घणा सुरीलो तव्हांजी वॉइस आहे तव्हां वाकई जबरदस्त गानो ॿुधायो आहे त कंहिंजे नाले ते इहो गानो जेको हाणे मां प्ले कंदो वालेकुम अस्सलाम ज़बार भाउ पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो ऐं हमेशह खिलंदा मुस्कुराईंदा रहो थैंक यू सो मच थैंक यू अल्लाह हाफिज़ हमारे साथ ज़बार भाई और ज़बार भाई के बाद टाइम तो होता है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी कॉल्स भी ले लें ताकि फिर आप नाराज ना हो कि हमारी कॉल अटेंड नहीं कर पाते क्योंकि टाइम इतनी तेजी रफ्तारी से गुजरता है ना कि कमर्शियल ब्रेक का टाइम आ जाता है अभी इसमें अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वाला अली मदद केर असां सभिनी सां गॾु ज़ाहिद शाह साहब ईद मुबारक सभु सभु इहे बना तव्हां ॿारनि जी दुआऊं आहिनि इहो ॿुधायो त ईद जो टियों ॾींहुं तव्हांजो कीअं थो गुज़रे मरी वियासीं बसि इहा गर्मी आहे त भाणे छा कयूं गर्मी त थींदी न जानी बसि इहा इहे सभु असां पाकिस्तानी आहियूं असांखे सहणो आहे असांजो पाकिस्तानी जो वॾो जिगर आहे असांखे कॾहिं बि कुझु न थींदो अलाह जे अला साईं जो हुकुम सां पोइ माना दिलि पके पाकिस्तानी हम लोग पके पाकिस्तानी आहे माशाला हा हा वाह ज़बरदस्त इहो सुठी ॻाल्हि आहे माना इंजॉयमेंट हूंदी आहे उते तव्हांखे ॾिसां त हमेशह खिलंदा मुस्कुराईंदा ऐं ज़िंदगी जे हर पल खे इंजॉय कंदा रहो ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़ाहिद शाह साहब मां तव्हांखे गानो ॿुधाइण वारो आहियां कंहिंजे नाले था करणु चाहियो
1: साईं मुंहिंजे दिलनि जो कहिड़ो दोस्त आहे दर्श खान लाॾो
0: जी जी
1: अब्दुल ख़ान पंचर पंचर सही ऐं जेका बि दोस्त संगत ॿुधंदा आहिनि मुंहिंजे लाइ उन्हनि खे ईद जो ॾींहुं मुबारक जिते हुजे आबाद थी।
0: आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। तव्हां पंहिंजी ज़िंदगी खे एंजॉय कंदा रहो ऐं असां सां गॾु रहो। थैंक यू अदा ज़ाहिद शाह बाब।
1: महिरबानी खुदा हाफ़िज़।
0: थैंक यू। हमारे साथ ज़ाहिद भाई, और ज़ाहिद भाई के बाद हम प्ले करते हैं गदत कमर्शियल ब्रेक। कमर्शियल ब्रेक के बाद आप एक जबरदस्त गाना सुन पाएंगे, तो सुनिए और हमारे साथ रहिए। अज़ा के पुर मुसर्रत मौके पर जी एस अखर FM 88 की जानिब से आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद, खुशखबरी।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। जी एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सखर जी गर्मी है, खैरपुर जी गर्मी है के
1: दादी गर्मी है सर, दादी गर्मी है, किराची ना है सर।
0: हां किराची बाकी इतनी ना है, पर तेला ही आए, पर हां छा क्यों दा मोकलू भी तो गुजारनी है ना।
1: बिल्कुल सर, बच्चन दा मोकलू गुजारनी है सर।
0: एग्जैक्टली, तो तुम ये बताओ ईद दा ट्रेन ही दा क्यों गुजरा, जबरदस्त गुजरा हुंदा
1: सर। बस ये तो पांच मुझे मामू खैरपुर मुजई कंदवा सर, सारे बड़ी है सर।
0: अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। ई तानी जॉब किन थे हले? हमारे साथ है मुनीर भाई, बहुत प्यारे से, और जनाब कराची से अपनी छुट्टियां एंजॉय करने आए अपनी फैमिली के साथ, और हमारे शो को एंजॉय कर रहे हैं। लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: केरे दासा सबनी सांगाडो
2: शिकारपुर गाइसों वाब जमालदीन भयो।
0: जमालदीन भयो साहब, ईद जो ट्रेंडी तांके मुबारक।
2: खैर मुबारक तास दिन तो मुबारक साहब।
0: थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जुमे जरी आज छादा क्यों कारे घुमण फिरण जो प्लान तव? अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। शमन प्ले क्या तो कैंजे नाले था करना चाहो?
2: हाँ इंदौर ला भाई नहीं मतलब बंदा जिके जिके दोस्तों को तो नहीं पता देवर नहीं हवा वाली को सभी नसनाले को हैं सभी नहीं तो ऊपर
0: वालिकुम अस्सलाम है सभी तरफ तांग के भी मुबारक। थैंक यू सो मच अदा पांचो खास कर जो जमालदीन भाई साहब ता सके शिकारपुर में कॉल किया है। हाने बैठो दा शोजी की भी कॉल दिसो ता लाइन ते असन सबनी सा गड के रहे 03000113488। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, क्या हाल है?
0: ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कौन हमारे साथ? कौन?
2: अली हसन बाबू।
0: अली हसन बाबू साहब, क्या हाल चाल है? ईद जो टे ओडी ताके मुबारक हुजे। थैंक यू थैंक यू सो मच। अली हसन बाबू साहब यो बधायो, शमन जो गाने प्ले कर चुका है, कहें जनाले करना चाहो? खबर ही न पई। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, बाकी जिंदगी ही हसीना ही गुजरी वी खबर ही कौन पी कहें करना चाहते हो गानों? जी जी
2: गरीब गुरखो गर्मी में दो अढ़ाई कलाक में सतल पतल मूराई
0: पीछे हर को दान पहुंचा अगर कुर्बानी कई है गरीब गुरबो कड़ी जो बेठा तो उनके गोश से छो न विरा वो आप सही गाल है। पर एड़ी एड़ी कुर्बानी जो केड़ो फायदो
2: मिलानी आ हम कुफारन के बुदान वती अब ओकना कुर्बानी ने कर के साल के आसो न कर मान।
0: वाकई एड़ी कुर्बानी जो केड़ो फायदो जे का मुस्तहकीन के गोश्त न मिले तो फायदो केड़ो? बस सदा खुश आमद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अड़ा मू हाँ चवे अड़े मानून के जो पांजा फ्रिज भरिंदा था वन गरीब मुस्तहकीन जन वही खाली हथ वापस से मोटिया था वन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस साईं अल्लाह साईं उनके हिदायत रे अल्लाह साईं जी बस अल्लाह साईं हिदायत जी इंशाल्लाह। थैंक यू अली हसन बाबू साहब, टाइम थी चुका है, मां तुम्हारे गानों प्ले कर चुका है, गाने के बुधो कुर्बानी के बारे में भी गलायूं था।

पहिरीं अस्ताइतो ऐं ज़िमेवारानो किरदार अदा कंदो रहियो आहे। ओमान खे तबाह ऐं बर्बाद करण जहिड़ा बयान आलमी लाॻापनि में कानून जी बदकड़ी खे मामूल बणाइण जी अलामत आहिनि। सदर ऐं वज़ीर आज़म पारां गॾियल क़ौमनि जे अमन दस्तनि जे आलमी ॾींहं ते पैगाम। सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो आहे त आलमी अमन लाइ क़ुर्बानी ॾींदड़ 183 पाकिस्तानी अहलकारनि बहादुरी खे सलाम पेश कयूं था। पाकिस्तान 60 वरियनि खां यूएन अमन मिशन में नुमाया किरदार अदा करे रहियो आहे। कश्मीरियुनि जी उमीदनि मूजिबि कश्मीर मसइलो हल कयो वञे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो त हीउ ॾींहुं सॼी दुनिया में इंसाननि जे तहफ़ुज़ लाइ सियासी अज़म ऐं माली मामलनि जी अहमियत उजागर करण लाइ रखियो वियो आहे। क़ौमी फ़ख्र जी ॻाल्हि आहे त पाकिस्तान गॾियल क़ौमी जे अमन मिशन में पंजो वॾो हिसो आहे। रियासती ऐं गैर रियासती जंगनि जे तरीक़े तब्दील थी चुका आहिनि। अमन दस्ता हाइबर ख़तरनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। आलमी अमन लाइ जानियूं क़ुर्बान कंदड़ ब्लू हेलमेट्स खे पाकिस्तान पारां भेटा पेश। ISPR पंहिंजी बधाई में ॼाणायो आहे त आलमी अमन लाइ मुसलसिल ऐं इज्तमाही क़ुर्बानी जी ज़रूरत आहे। 237,000 पाकिस्तानी अमन मिशन में पंहिंजूं ख़िदमतूं सरअंजाम ॾेई रहिया आहिनि। यूएन अमन मिशन में 183 बहादुर पाकिस्तानी अहलकार शहीद थिया। साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल प्रोपेगेंडा ऐं मौसमियाती तब्दीलियूं अमन लाइ नौजवान चैलेंजेस बणिजी चुकियूं आहिनि। पाकिस्तान जदीद इंटेलिजेंस ट्रेनिंग ऐं क्लाइमेट फ्रेमवर्क ज़रिए अमन में सीड़पकारी करे रहियो आहे।

सदर आसिफ अली ज़रदारी सेनेट ऐं क़ौमी असेंबली जा बजट इजलास 5 जून ते तलब करे वरिता। क़ौमी असेंबली जो इजलास शाम 5 वॻे ऐं सेनेट जो इजलास शाम 6 वॻे थींदो। इजलास में ईंदड़ बजट ते बहस थींदो। बलोचिस्तान मां 13 ॾींहं अगवा थियल सईद मेमण अञा ताईं बाज़ियाब न थी सघियो। संदसि बाज़ियाबी लाइ हैदराबाद में वारिसन सियासी समाजी अॻवाननि ऐं शहरियुनि जो एहतजाजी मुज़ाहिरो। मुज़ाहिरनि चिताव ॾींदे चयो त सिंध ऐं बलोचिस्तान हुकूमतूं सईद मेमण जी बाज़ियाबी लाइ फौरी क़दम खणनि, ॿी सूरत में एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो।

शिकारपुर भरसा गोठाणनि खां मोटर साइकिल फुरकण जी कोशिश दौरान पुलिस पहुचण ते मुकाबलो। फायरिंग में डोहारी कादिर कबालाणी जतोई मारिजी वियो। पुलिस जो चवण आहे त मारिजी वियल डोहारी वटां फुरतियल मोटर साइकिल ऐं टीटी पिस्टल हथायो आहे। लाश अस्पताल मुंतकिल करे वधीक जांच शुरू कई वई आहे।

सिंध में पाणीअ जी खोट बरकरार, उबावड़ो में वाहन ऐं शाखुनि में पाणी न हुजण ख़िलाफ़ आबादकारनि रस्तनि ते निकिरी आया। रोहड़ी जे ॻोठ अछियूं कुबियूं जे रवासियुनि जो पीअण जे पाणीअ लाइ एहतजाज। उबावड़ो जे सवण माइनर, दिलवारो माइनर, डहरवा ऐं ॿियनि शाखुनि तोड़ी वाहन में पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ आबादकारनि मीरकोश रेगुलेटर वटि धरणो हुयो। रोहड़ी जे ॻोठ अछियूं कुबियूं जे रवासियुनि बि पीअण जे पाणीअ जी शदीद खोट ऐं बिजली जी अण एलांगियल लोड शेडिंग ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हयो ऐं नारेबाज़ी कई।

0: जी जनो वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से ईद की धूम में अशफाक आपके साथ है। जी एफएम 88 नेटवर्क से आप ये शो सुनते हैं जनाब हमारे, और आपके साथ को एक घंटा बखैर आफियत से गुजर चुका है। इस गर्मा गर्मी में भी आप लोग चिल किए हुए हैं क्योंकि आपके लिए आपके फेवरेट गाने और आपके साथ चिट चैट हो रही है जनाब। ईद का तीसरा दिन और जुमातुल मुबारक का बेहतरीन सा दिन है, और जनाब आप लोग इंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ अपने हर पल को। वैसे जनाब आप लोग काफी पॉजिटिव लोग हैं, काफी पॉजिटिव पॉजिटिव सोचते हैं। कुछ देर पहले कॉल आई कि जनाब एक कुर्बानी हुई और कुर्बानी में उन्होंने बड़ा जानवर काटा, लेकिन वो जो बाहर मुस्तहकीन बैठे हुए थे उनको किसी ने भी गोश्त नहीं दिया, और वो सब बेचारे मुस्तहकीन जो थे वो उठ के चले गए बेचारे कई घंटों के इंतजार के बाद। तो जनाब ये कहाँ की इंसानियत है, ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ की कुर्बानी है जनाब। हम लोग जो कहते हैं कि सुन्नत इब्राहिमी पे अमल कर रहे हैं और हम लोग जो है गरीबों मुस्तहकीन में गोश्त बांटेंगे, तो जनाब तो ये अपने फ्रिजों में सजा के रख लेना, अपने लिए रख लेना, खुशामदी लोगों को देना, उन लोगों को देना जिन लोगों ने आपको गोश्त दिया है, उन लोगों को देना जिन लोगों ने कुर्बानी ऑलरेडी की है, तो ये कहाँ का ये सीन है और क्या चीज़ है। जो लोग नहीं करते बेचारे उन लोगों तक आप गोश्त पहुँचाए, जो लोग सुबह से आपका इंतजार कर रहे थे, बाहर बैठे हुए थे, सख्त धूप में बैठे हुए थे, इतनी गर्मी में बैठे हुए थे, तो प्लीज़ आप उनका थोड़ा सा ख्याल रखें। और देखें ना, सवाब की नीयत से हम लोग ये करते हैं तो हमें सवाब तो कम अज़ कम मिलना चाहिए ना। ये ना हो कि बस हम लोग वो एक रिवाज पूरा कर रहे हैं और फिर बस अपने पास गोश्त रख रहे हैं, तो हम गोश्त कितना खाएंगे यार, लोड शेडिंग है इतनी और इतनी गर्मी है। गोश्त खराब होने से बेहतर है कि किसी के पेट में चला जाए, किसी गरीब के पास चला जाए, और गोश्त की ये दो चार बोटियां देने से हम लोग कोई गरीब नहीं हो जाते। आजकल तो ये रिवाज है कि गोश्त की दो चार बोटियां हम लोग लोगों को देते हैं, बाकी तो ज्यादा अपने पास रख देते हैं। तो गोश्त इतना देना चाहिए कि लोगों के कम से कम दो टाइम की या दो दिन की हांडी वांडी हो जाए, ताकि वो अच्छे तरीके से इस गोश्त को जनाब खा सकें। तो प्लीज थोड़ा सा ख्याल कीजिए इस तरफ। लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल जनाब आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम लेते हैं शो की एक और कॉल, देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है। लेकिन जनाब आई थिंक कॉल ड्रॉप हो रही है और सिग्नल का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है। हम चाहते हैं कि जनाब आप हमारे साथ आएं और जनाब अपनी ईद को और अपने जुम्मे के दिन को और ज़्यादा शानदार बनाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका हर लम्हा जो आप हमारे साथ गुजारें वो बहुत अच्छा हो। और वैसे भी जनाब इंसान यही चाहता है कि जिससे भी मिले उसके साथ खुशगवार टाइम स्पेंड हो, जिससे मिले उसके साथ पॉजिटिव पॉइंट्स उसके नोट करें। वैसे आपने कभी नोट किया कि हम जिस शख्स में मिलते हैं उसके दो रुख होते हैं ना, एक अच्छा, एक अच्छाई का, और दूसरा बुराई का। तो ये हम पे डिपेंडेंट होता है कि हम कौन सा रुख देख रहे होते हैं ना, कि हम कौन सा रुख उसको देख रहे होते हैं और कौन से उसकी पॉजिटिव चीज़ें देख। अगर हम पॉजिटिव हैं तो हम पॉजिटिव चीज़ें देखेंगे, लेकिन अगर हम नेगेटिव हैं तो उसके नेगेटिव पॉइंट देखेंगे। तो हमेशा कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जिस इंसान से भी हम मिल रहे हैं तो हमें पॉजिटिव जनाब सोचना चाहिए उसके बारे में, और पॉजिटिव चीजें ही नोट करनी चाहिए। वैसे तो अच्छाई बुराई हर किसी भी होते हैं, पांच उंगलियां बराबर नहीं होती। मुझ में भी बहुत सारी अच्छाइयां हैं, मुझ में भी बहुत सारी बुराइयां, आप में भी बहुत सारी अच्छाइयां, आप में भी बहुत सारी बुराइयां। तो बुराइयों को छोड़ दिया कीजिए और उसकी जो अच्छाइयां होती ना वो गिना कीजिए, क्योंकि वैसे भी जनाब आजकल पॉजिटिविटी बहुत कम हो गई है लोगों में, नेगेटिविटी बहुत बढ़ गई है, इसीलिए हमें डिप्रेशन में मुब्तला हो जाते हैं हम, जो है बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं हम, नाउमीदी और मायूसी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी बढ़ गई है और पॉजिटिविटी कम हो गई है। तो मजबूत सोचिए और मजबूत ख्यालों के साथ रहें, और हम लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: कौन हमारे साथ जनाब?
1: इशाक मियाजी साहब, चार आसिफ लखमीर के गलाया।
0: अल्हम्दुलिल्लाह, आसिफ लखमीर साहब केड़ा हाल चाल है, ताकि ईद जी खोर सारी वाधायूं।
1: इशाक मियाजी साहब, आज ताजे प्रोग्राम असारे मोरो स्टेशन ते कनेक्ट ना है
0: अलाइचो। मोरो स्टेशन ते कनेक्ट ना है अलाइचो, मां त असा त बिल्कुल पानी तरफा उनन के मैसेज करे छड़े हो, तो बाबा कनेक्ट कियो असा के।
1: आज मोरो स्टेशन बंद करे छड़ी ता, मोरो स्टेशन ते हले न पियो, मेहरबानी करे ट्राई करे हलायो।
0: अच्छा, मोरो स्टेशन इज नॉट कनेक्टेड, ओके सही है।
1: असा बुधाऊं पिया तवाजो प्रोग्राम माशाल्लाह जबरदस्त आ, पर मेहरबानी करे मोरो स्टेशन हलायो।
0: अच्छा ठीक है,
1: असला प्यारा प्री दोस्त आयो, आई अल्लाह पाक तवां के खुश रखे, असा हर नमाज में तवाजे हक में दुआ घुरन आयो।
0: जी जी जी, थैंक यू सो मच दादा, तवां पाण प्यारा मानू आयो, पाण जबरदस्त मानू आयो, इंशाल्लाह मां मोरो वारन के मैसेज करे छड़ियो आए, जरूर कनेक्ट कंदा।
1: असा जी को तो थोड़ो एक नाथ प्ले कंदा सी।
0: जी जी जी जरूर, जी जी जरूर जरूर।
2: हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा

0: माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जबरदस्त
1: दोस्त आहे न पर महिरबानी करे सर कलाम जेको आहे सो जॾहिं मोरो स्टेशन कनेक्ट थिए पोइ प्ले कजो बाक़ी असांजा दोस्त आहिनि
0: जी जी
1: मजबूरियूं
0: थैंक यू सो मच अदा थैंक यू सो मच आसिफ भा थैंक यू जी जना हमारे साथ आसिफ भाई फ्रॉम मोरो और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने फरमाशी गानों को चलवा सकते हैं अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम
0: वाह वाह मुझे ख्याल में वहीद वफा जतोई साहब है
2: बिल्कुल वफा अब्दुल वहीद जतोई चंदान और केटी शाह बिल पाल को दिल सखरा
0: वाह वाह वाह वाह केड़ा हाल चाल है दा तांजा
2: साईं शुक्रा शुक्रा यार यो आज टीडी ईद आ जमी जी भी मुबारक हो जनी
0: थैंक यू ताके भी मुबारक
2: हो यार ये देखो तां नंबर हिंग तो चने तो काल जे करे अले सिंगल न तजे हिंग तो चने लाई
0: बिल्कुल जनाब छोटा गर्मी भी लाई आए आई जको सिग्नल जो भी प्रॉब्लम होता है इन करे हैंग थी विंदो आप
2: जी जी बिल्कुल दे बुधाय साईं असल में तंहिंजो शो ॿुधंदा शुरू में भालियूं मालियूं बाक़ी त जेको तव्हां ॻाल्हि कई हुजे हिसाब सां त इहा ग़लति ॻाल्हि आहे माण्हुनि जी त बाबा गोश्त कटनि बि अथा पर ग़रीबनि गुरबनि खे नथा ॾियनि
0: त पोइ कहिड़ो फ़ाइदो हिन जो बिल्कुल जनाब न कनि छो त गरीब गुरबा ईअं हलिया था वञनि ईअं ई मोटिया था वञनि खाली शापर हथ में खणी करे त पोइ
2: ॿुधो आहे त अॻ में पाड़ो पाड़े खां पोइ गरीब गरीबनि खां पोइ वरी मिटंदा
0: बिल्कुल बिल्कुल ज़मानो सुधरी वञो वेंदो त वफ़ा वहीद साहब इहो ॿुधायो त मां हाणे गानो प्ले कंदुमि हिकिड़ो जेको आहे मास्टर मंज़ूर जो तव्हांजा बाद में प्ले कंदुमि छो तव्हांजा कनेक्टेड न आहे मोरो आई थिंक मां गानो प्ले कंदुमि नंढड़ा ॿार आहिनि असांजा तमामु घणा प्यारा प्यारा उनजी फरमाइश थिए त तव्हां इहो गानो कंहिंजे नाले था करणु चाहियो मौजू टॉपिक न आहे बल्कि असां त ईद जो सेलिब्रेट था कयूं ईद जी कोई बि ॻाल्हि तव्हां कई जीअं कुर्बानी कोई बि ॻाल्हि करे सघो था
2: हिकिड़ो सुकून माना मिटनि माइटनि मां मिलियासीं वॾो बेहतरीन कमु थी वियो
0: सही सही माना एंटरटेनमेंट बि हासिल कई आहे खाधा बि खाधासीं ऐं दोस्तनि सां बि गप शप कई से माना इलाही सुठो टाइम गुज़री वियो भले जी बिल्कुलु हाणे कल्ह वरी साॻिया टुकर साग सां
2: खाईंदासीं
0: बिल्कुलु ॿुधो आहे मूंखे
2: खाधासीं मिटनि माइटनि घुमियासीं दोस्तनि घुमियासीं कुझु असां खाधो कुझु खारायोसीं वरी साॻा ई टुकड़ साग में
0: वाकई ऐं नेक्स्ट जेको मुंहिंजो प्रोग्राम हूंदो न नेक्स्ट फ्राइडे ते उहा पहाकनि ते रखंदासीं त जीअं तव्हां अचो ऐं डिफरेंट डिफरेंट सुठा सुठा पहाका ॿुधायो त हुनजो मतिलबु बि ॿुधायो त छा हूंदो आहे छा न हूंदो आहे
2: मसरूफ़ आहे
0: वठण
2: वियो हुजे

0: मुबारक एंड बाय-बाय। हमारे साथ वहीद बप्पा जितोई जनाब, और आप भी हमें कॉल करें 03-0011-3488 हमारा नंबर है जनाब। और शाम के ढलते साए गर्मा गर्मी बदस्तूर जारी, लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: हेलो अस्सलाम वालेकुम इशफाक भाई।
0: वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई, केर असा सबनी सा गड।
1: हेलो
0: हेलो अस्सलाम वालेकुम। आवाज अच्छे थी अदा
1: का लगी थे?
0: हाँ हाँ लगी तो है, थोड़ी आवाज भी आंदी पई है।
1: हेलो
0: हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: कॉल करें 03-0011-3।
1: हेलो
0: अस्सलाम वालेकुम।
2: गर्मा गर्मी बदस्तूर जारी, लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
0: उन्होंने रेडियो खोल दिया, आई थिंक मेरी आवाज ही मुझे वापस आ रही है।
1: वालेकुम सलाम।
0: जी जी केड़ा हाल है नेता? देख लें जनाब लाइन की
1: सही में। वकार जतोई,
0: वकार जतोई साहब कितना प्यार गला है।
1: हेलो इशफाक भाई।
0: जी जी तमाम गलायो गलायो मुखे, बस आवाज अच्छे थी मुझे खाल में, मुझे आवाज आनी नहीं थी।
1: लगल थे आवाज नहीं जाऊंगा
0: जी। ऐसा भी होता है, देख लें कि गर्मा गर्मी से कुछ आवाज नहीं आ रही है, शायद मेरी आवाज दब गई है और उनकी आवाज बकार जो की
1: आवाज अच्छे माँ क्या
0: अदा आवाज अच्छे थी तमाम बीहर मुख्य कॉल कजो तमाम गलायो गलायो बस मुख्य आवाज अच्छी हुई जी। अनफॉर्चुनेटली उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है, पर कोई बात नहीं, वकार जतोई हमारे साथ मौजूद थे और जनाब उनकी जनाब मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही थी लेकिन उनकी आवाज़ मुझ तक पहुंच रही थी। अस्सलाम वालेकुम। कौन मेरे साथ?
3: मोरो खान
0: मोरो खान केर पे गलायो था? हाफिज सावल साहब। मोरो में असो प्रोग्राम हले तो रेडियो ते? अच्छा फेसबुक ते बुधो पिया और मोरो में माना नथ वाले रेडियो सेट थे। ओके जनाब ओके कोई गाल नहीं। अच्छा हाफिज साहब केड़ा हाल चाल था, ठीक ठाक आए हो?
3: अल्हम्दुलिल्लाह
0: दुआ लगी पया बिल्कुल फर्स्ट क्लास। ईद जो टे नी ताके मुबारक हुजे। थैंक यू थैंक यू। अदा हाफिज साहब मैं गानों तो हलाया। मैंने देखा जो ये देखा सुनहरी आंखें।
3: यही हो कलाम ना?
0: हां केड़ो वरी हेलो ठीक है ठीक है ठीक है। मास्टर मंजूर बारो जी जी जी जी जी अच्छा ठीक है। मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट किया था मोरो बारन के तो प्लीज कनेक्ट करो ठीक है दा। थैंक यू जी जनाब। हमारे साथ थे मोरो से बहुत प्यारे से कॉलर। आज हमारा मोरो स्टेशन थोड़ा सुस्त हो गया है, वो हमें कनेक्ट नहीं कर पा रहे, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि जनाब प्लीज मोरो की आवाम को भी जनाब ये प्रोग्राम कनेक्ट करके बताएं और जनाब ताकि वो लोग भी हमारे शो को सुन पाएं। खैर जनाब इस वक्त हम ज़ारा खुशी सलार समय जो कश्यप ज़ारा की फरमाइश पर प्ले करते हैं, बहुत प्यारा सा गाना इस वक्त मेरे पास मौजूद है। पाकिस्तानी ड्रामा सीरीज काबली पुलाव का बहुत प्यारा सा गाना, इस गाने को सुनिएगा और सुनते रहिएगा जीएफएमएटी नेटवर्क से। आपका अपना शो ईद की धूम विद अशफाक नियाज़ी।

ज़बरदस्त आहे ॿारनि जी दुआऊं आहिनि. अली ख़ान, मां मोरो जे भाउ जी हिकिड़ी फ़रमाइश प्ले कयां थो. सम्झा थो तुंहिंजी मजबूरियूं. मास्टर मंज़ूर जो गानो आहे, कंहिंजे नाले ते करणु चाहियो? थैंक यू अली भाई, पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो. अल्लाह हाफ़िज़. हमारे साथ जनाब लड़काना से अली भाई और अली खान भाई, और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 03000113. हम आपके और आप हमारे साथ मौजूद हैं, लेंगे शो की एक कॉल.

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: कुर्बान फल पोटो
1: कुर्बान फल पोटो पांजो खास ख्याल रखो आता गर्मी का भी बच जो थैंक यू सो मच कुर्बान हमारे साथ मौजूद है कुर्बान भाई और जनाब अब शो के आखिरी लम्हा चल रहे हैं हम चाहते हैं कि आपकी कॉल्स को शामिल प्रोग्राम करते चलें तो लेते हैं शो की एक और कॉल

0: इंस्पेक्टर यार साहब आए तो कितने लोग आए केटी शाबी ले कहाँ
1: जाइद भाई केटी शाबी ले वाला सब किया इन तमाम किया है वो
0: भला यार मालिक का शुक्र है प्यारा बात हम उधर किया है ठीक है
1: फर्स्ट क्लास ईद जो टेडी ताके मुबारक हो ज्यादा
0: अल्हम्दुलिल्लाह ताके प्यारा भाई दे चुन लिया मुबारक हो तमाम जे पूरा टीम को सब ने बदन रन के
1: थैंक यू अदा यो बुधायो हाने मा गानो प्ले तो क्या तावला जो कहन जनाला तक करना चाहे हो
0: वो तांके डेडिकेट करा दे मुझे बाबा अब्दुल कदीर जत अब्दुल भाई जत जावे जत यारी मदद जत एकरो अर्जा दियो
1: जी जी हाजिर हाजिर हुकुम
0: दोस्तन के जे पर तो एडवांस न चाहिए हर कन पंजो दिन मा कुंदो आ कुछ मानो के ता जवान कुछ के जे को ईद जा दी हूं ता ते दिन ता ई जे साल को बाद दे ये समझ सब को वडो दिन खुश है दिन दवाई ता जो
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: जेके भी दोस्त नाराज आइन त उनन के को इंसान नाराज हो पर ईद जे दिन उनन के जेको आ परचाण गो दे जे जनता करे बा भरोसो ना हम तो
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल दोस्त नाराज आन मिट माइट नाराज उनके परचायो उनके गले लगायो पांजी रंजिश दूर कयो
0: जी जी कोशिश मानू करे पंहिंजी जेको आहे त कोशिश करे पोइ आहे हुनजी मर्ज़ी इंसान जो पंहिंजी कोशिश करे कोशिश कामयाबी जी कुंजी पिया भाउ
1: बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हां तमामु घणी सुठी ॻाल्हि कई आहे ज़ाहिद भाउ कोशिशि करणी खपे त कोई बि असांखे नाराज़ न थिए वॾे ॾींहुं
0: बाक़ी ईअं थी वेंदो आहे त असां चवंदा हो परचाईंदो ऐं हो चवंदा त हू परचाईंदो हिन माना ग़लति इंसान कॾहिं खां परे पइजी वेंदा आहिनि
1: सही ॻाल्हि आहे बिल्कुलु तव्हां सुठी ॻाल्हि कई आहे ऐं हिन सुठी ॻाल्हि खे असां तमामु दोस्तनि ताईं पहुचाए छॾी आहे इनशाला ताला सभु अमल कंदा इनशाला
0: वॾी महिरबानी तेरा भाउ अला तव्हांखे ख़ुशि रखे ईअं शो कंदा आहियो असां बि तव्हां टियों खां वठी शो ॿुधंदा बाक़ी नेक्स्ट शो कहिड़े टाइम कंदा आहियो
1: नेक्स्ट शो इनशाला फ्राइडे ते
0: चलो ठीक है साईं वडी मेहरबानी
1: थैंक यू ज़ाहिद भाई थैंक यू सो मच बिल्कुल जनाब ज़ाहिद भाई ने बहुत अच्छी बात की कि रंजिशें दूर कीजिए अपनी और गले लगाइए उन लोगों को जिनसे आप नाराज हैं अगर आपके बारे में कोई या उनके बारे में कोई गलतफहमी आपको हो तो मिल के उन चीज़ों को सॉल्व कीजिए और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए क्योंकि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता कि कब कहाँ पर एंड हो जाए इसलिए कोशिश कीजिए कि कोई आपसे नाराज ना रहे और दिल से मुतमईन हो जाए लेते हैं शो की लास्ट कॉल और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम
0: वालेकुम सलाम अशफाक भाई साहब आप
1: ठीक ठाक मजा प्यारा भा खैर पियो गलाए किथा पियो गलाए ईद मुबारक
0: खैर मुबारक नमस्ते जी को मां अशफाक भाई
1: सोना भाई छा हाल चाल है ठीक ठाक
0: अल्हम्दुलिल्लाह करता हूं एंजॉय उन दाम जाए दाम खुश है फर्स्ट टीम खुश है सर
1: सब मजे में आई ताकि ईद मुबारक हो जाता लास्ट डे थैंक यू सो मच अदा लास्ट गानो प्ले कर चुका है कहीं जनाला तक करना चाहो
0: सर नाम कौन चाहिए सबका पहले आलिया हसन भाई उनके नाले अली गुल कटवारा उनके बाद में जवार बच्चन चंबानिया इश्कापुर का जमाल दिन भयो है जेके भी श्री प्यारा बुझी रहे हैं सबन के सही तरफ आई दे जो आखिरी दिन में मुबारक है तानी टीम के भी सर
1: सही थैंक यू सो मच अदा
0: ठीक है सर
1: बड़ी मेहरबानी था बड़ी मेहरबानी जी जनाब हमारे साथ सोना खान मस्तोई और अब शो को मांडे पेने का टाइम पहुंचा है रंजिशें खत्म कीजिए दिलों को बड़ा कीजिए और लोगों को गले लगाइए यही हमारा लास्ट का पैगाम है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फ्राइडे फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल तमाम सुनने वालों को एक बार फिर से तीसरा दिन बहुत मुबारक अगले हफ्ते फिर मिलेंगे अगले जुम्मे को और तब तक के लिए अशफाक को दीजिए इजाजत टेक केयर गुड बाय वरना आई लव यू ऑल एंड अल्लाह के बाद

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान से मायदे जो मसवदो इसराइल समेत इतिहादी मुल्क उमाड़े छो। बरतानवी अखबार गार्जियन मूजिब मसवदे में ईरान के संदस जब्त थियल 12,000 अरब डॉलर के असासन की पहुंच डिनी वी। मसवदे में अपनाए हरमोज मामूल जी बहाल कर तजवीज भी शामिल। बरतानवी अखबार मूजिब चीन चाहे तो मायदे में हतमी मंजूरी गडियल कौमन में वी वे। अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस अमरीका ईरान मायदे के वेझो जरूर आन पर अकम्मल मायदे त न पहुता है। एटमी प्रोग्राम तां पोएते टिकण जी पोजीशन में आए। पक सां चवण दुख्यो आए तो सदर ट्रंप वायदे ते कदें सही कंदो। अमेरिका के नाणे वाले वजीर है तो सदर ट्रंप जो रेड लाइन्स वाज है। ईरान के रचाव थियल यूरेनियम का हथ खणो पवंदो अपना हुरमुस खोलो पवंदो। सदर ट्रंप ईरान मामले ते पेंजी रेड लाइन्स का बाहर का भी डील न कंदो। ओमानी हुकूमत खातरी कराई है तो उसमें टोल टैक्स जो को भी मनसूबो न है। सिक्यान पारा मायदे ताई पहुंचण ते पाकिस्तान जी कोशिशन जी वाखाण। मसूद सिक्यान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ते लिखियो आहे त मायदे बाबत पाकिस्तान जी असरायती कोशिशन ते थोरायतो आहियां। इंसानी हमदर्दी वारे मौकिफ ते मलेशिया ऐं मायदे बाबत पाकिस्तान जी कोशिशन जी वाखाण। महीना अग शुरू कल जंग की कीमत अवाम अदा कर रो है। जंग हाँ खत्म थे घुर्जे। न्यूयॉर्क के मेयर जोरान ममदानी सोशल मीडिया से बयान में चया है कांग्रेस की मंसूरी का सिवाय शुरू थियल जंग में अवाम की बजट मुतासर थी रही है। जंग सबब अमरीका में पेट्रोल और बेन शयन के अगन में वाद थी। अमरीका लबनान ए वालारियल फलस्तीन समेत पूरे खिते में सहूनी हुकूमत के दोहन में शरीक है। ईरान लबनान मथा इसराइली हमल अवान के अमरीकी धमकियों से आलमी इदार की खामोशी ए बेहसी से गणती जाहिर कर छी। ईरान के परदेही तर्जुमान इस्माइल बकाई है तो आलमी इदार की खामोशी ए बेहसी इसराइल के जारह बढ़ाए रही है। गडियल कौमन के मेंबर मुल्क के मिसरण जो धमकियों ताई खतरनाक तर्ज अमल हैं। ओमान खिते में अमन ए सलामती लाए सदाई तामीरी असरायतो ए जिम्मेवार किरदार अदा कंदो रहयो आहे। ओमान के तबाह बर्बाद करण जेड़ा बयान आलमी लागापन में कानून की भजकड़ी के मामूल बनाने की अलामत आहिन। सदर ए वजीर आजम पारा गडियल कौमन के अमन दस्तन के आलमी ढी से पैगाम। सदर आसिफ जरदारी आलमी अमन लाए कुर्बानी डींदड़ 183 पाकिस्तानी अहलकार की बहादुरी के सलाम पेश क्यों था। पाकिस्तान 60 वरियन का यूएन अमन मश्क में नुमाया किरदार अदा कर रो है। कश्मीरियन की उम्मीद मूजिब कश्मीर मसलो हल कर वे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ये ढी सजी दुनिया में इंसान के तहफुज लाए सियासी अजम ए माली मावनत की अहमियत उजागर कर रखो वो है। कौमी फख्र की गाल है तो पाकिस्तान गड़ियल कौमी के अमन मश्क में पंजो वो हिस्सो है। रियासती ए गैर रियासती जंगन के तरीका तब्दील चुका है। अमन दस्ता हैबर खतरन के मुंह डेई रहा है। आलमी अमन लाए जानू कुर्बान कंदड़ ब्लू हेलमेट्स के पाकिस्तान पारा भेटा पेश। ISPR पेंजी पधराई में जानायो है त आलमी अमन लाए मुसलसिल ए इज्तमाई कुर्बानी की जरूरत है। 237,000 पाकिस्तानी अमन मश्क में पेंजू खिदमतू सर अंजाम डेई चुका है। यूएन अमन मश्क में 183 बहादुर पाकिस्तानी अहलकार शहीद थे। साइबर सिक्योरिटी डिजिटल प्रोपेगेंडा ए मौसमियाती तब्दीलू अमन लाए नवा चैलेंजेस बढ़ चुकू हैं। पाकिस्तान जदीद इंटेलिजेंस ट्रेनिंग ए क्लाइमेट फ्रेमवर्क जरिए अमन में सीड़पकारी कर रो है। नायब वजीर आजम इसहाक डार सरकारी तौर से वाशिंगटन पहुंतल। परदेही तर्जुमान मूजिब वाशिंगटन आमद से पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ए सिफारत खाने के अख्तियार इसहाक डार की आजियां कई। इसहाक डार वाशिंगटन में अमरीकी परदेही वजीर ए कौमी सलामती के मुशीर मार्को रुबियो से मुलाकात कंदो। सदर आसिफ अली जरदारी सेनेट ए कौमी असेंबली का बजट इजलास 5 जून से तलब कर वरता। कौमी असेंबली जो इजलास शाम 5 वगे ए सेनेट जो इजलास शाम 6 वगे इजलास में ईंदड़ बजट से बहस। तालीमी बोर्ड करप्शन केस में गिरफ्तार ठेकेदार जा छिड़काईंदड़ इंकशाफ। ठेकेदार नईम गोरी चयो आहे त मनपसंद इम्तिहानी मर्कज लगाए शागिर्दनि ऐं शागिर्दाणियुनि खे कापी कराई वेंदी हुई। रिश्वत एवज मैट्रिक खां वठी इंटर ताईं A1 ऐं A ग्रेड ॾियारा वेंदा हुआ। मैट्रिक में नंबर वधाइण लाइ 50 खां 60 हज़ार ऐं इंटर लाइ 80 खां 90 हज़ार रुपया रेट मुक़ररु हो। 1,000 शागिर्दनि जा नंबर रक़म वठी वधाया। रक़म लिफ़ाफ़नि में बंदि करे अनवर अलीम खे ॾींदो हुयुसि। 2023 में बिल्डिंग खाते जे कम जो ठीको DC ऑफिस जे PA ख़ालिद मार्फत 1 करोड़ रुपियनि में वरितो। 10 लख रुपया वर्क ऑर्डर कमीशन जी मद में ई वधीक 11 लख रुपया पिणे ॾिना। कमीशन खां सवाइ को कम नथो मिले।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलणु फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
3: हर चप्पा हर गोशा
4: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
3: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: और तेजी सूरत हाल से गाल बोल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान से वायदे जो मुसवदो इसराइल समेत इतिहादी मुल्क डाउ माने छो बरतानवी अखबार गार्जियन मूजिब मुसवदे में ईरान के सदस जब्त थियल 12,000 अरब डॉलर के असासन की पहुंच दीनी वेंदी मुसवदे में अपना हरमोस मामूल जी बहाल करने की तजवीज भी शामिल बरतानवी अखबार मूजिब चीन चाहे तो वायदे में हतमी मंजूरी गडियल कौमन मां वरती वे अमरीका के नायब सदर जेडी वेंसिव है अमरीका ईरान वायदे के वेझो जरूर आन पर अकम्मल वायदे ती न पौता एटमी प्रोग्राम तौते दिखने की पोजिशन में है पक से चवण दुख है सदर ट्रंप वायदे से कदें सही कह
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: जदीद मशीन जरिए चेकअप करायो होम्योपैथिक तरीके इलाज से शिफा हासिल करो जी हाँ हाँ अवां जे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो जिगर की गर्माइश गुर्दे की पथरी सोज पुरानी खंग जुकाम दिल की तकलीफ अध मथे जो सूर अखियन की खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इन सभी बीमारियों को कामयाब इलाज किया वो है होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोजानो सुबह 9 AM का शाम 6 AM तक बरोज जुम्मो 12 AM तक एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधिक मशवरे ए रबते के लिए 0327-99-84-763
3: जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क।

अस्सलाम वालेकुम जी सकर नवाब शाह एफएम 90.8 जलावे स्टूडियो में प्रोग्राम सेहत जो राज होम्योपैथिक सान सान करे हाजिर खिदमत मां वाजो पेंजो मेज़बान सलीम अहमद सरगाणी मुझो आवाज हवाउन जे लरन वसीले जिते जिते पहुंचे पियो गोठन वाहन वस्तिन या कोई ड्राइविंग दौरान या कोई कमकार दौरान असां ॿुधी रहियो आहे असां कनाए रहियो आहे उन्हनि सभिनीनि सजणनि खे मूं तरफ़ां सिख ई मोहबत भरियो सलाम क़बूल पवे सामिन अवां जा कहिड़ा हाल आहिनि उमेदु आहे तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदा असांजो खोड़ सारी दुआऊं अवां जे लाइ जिते बि हुजो शादाबाद हुजो सदाई खिलंदा मुस्कराईंदा रहो आमीन या रबल आलमीन सकरन हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक जी असमीन सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक जेका डॉक्टर साहब जो प्रोग्राम हूंदो हो क्लिनिक जे नाले सां सकरन होम्योपैथिक जी हाणे उहा हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक जे नाले सां क्लिनिक आहे जेका स्टेशन रोड ते मूव थी चुकी आहे जी असमीन सुभाणे छंछर वारे ॾींहुं हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड ते अव्हांखे डॉक्टर साहब मौजूदु मिलंदा ऐं शेरवानी किरिया वारी क्लिनिक बंदि थी चुकी आहे उतां डॉक्टर साहब हलिया विया आहिनि यानी हाणे डॉक्टर साहब जी पंहिंजी पुराणी जेका ॾाॾे वारी क्लिनिक आहे उहा मौजूदु आहे ऐं डॉक्टर साहब उते ई पंहिंजो सेटअप करे छॾियो आहे हाणे अव्हांजो इलाजु उन साॻे ई पुराणे तरीक़ेकार सां उन साॻी क्लिनिक ते ई इलाजु कयो वेंदो सामिन डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहबु असां सां गॾु मौजूदु आहिनि मां मूंखे ॿुधाईंदो हलां डॉक्टर साहबु माहिर अमराज़ नक कन गलो पुराणो नज़लो निचू जोड़नि जो सूरु मथे जो सूरु मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधणु जिगर जा मर्ज़ शुगर ब्लड प्रेशर दिलि जा मर्ज़ फालिज खंघि टीबी हेपाटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बि बग़ैर ऑपरेशन जे इलाजु कयो वञे थो गुर्दनि जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधणु मर्दनि तुड़े औरतनि में वज़न जो न वधणु अहिड़नि सभिनीनि बीमारियुनि जो कामयाबु इलाजु कयो वञे थो डॉक्टर साहबु रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां हाणे शाम 6 वॻे ताईं हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकरण में मरीज़नि जो इलाजु कंदा जी असमीन नवाब शाह मोड़ आहे नवाब शाह मोड़ खां थोरो अॻिते वेंदो उते तव्हांखे हाजी बेकरी ईंदी उन खां थोरो ई अॻियां डॉक्टर साहब जी क्लिनिक आहे समिन चौक ते ई डॉक्टर साहब जी क्लिनिक आहे ऐं डॉक्टर साहब जी क्लिनिक पुराणी मशहूरु आहे कहिड़े बि रक्षे वारे खे कंहिंखां बि तव्हां पुछा कंदो त हाजी इनायत क्लिनिक किथे आहे त हर कोई तव्हांखे ॿुधाईंदो वधीक डॉक्टर साहब जो नंबर मां तव्हांखे नोट करायां थो इहो नंबर डॉक्टर साहब वटि मौजूदु हूंदो आहे तव्हां इन ते कॉल करे राबितो करे सघो था नंबर नोट कंदा 0027784 7983 जी असमिन इहो डॉक्टर साहब जो मोबाइल नंबर आहे ऐं मां तव्हांखे वरी ॿुधाईंदो हलां डॉक्टर साहब जी क्लिनिक हाणे हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक जे नाले सां आहे स्टेशन रोड सकरण ते नवाब शाह मोड़ खां थोरो अॻियां स्टेशन रोड जी तरफ़ ईंदा त डॉक्टर साहबु

0: तव्हांखे क्लिनिक ते मौजूद मिलंदा ॿाहिरां मेडिकल स्टोर आहे ऐं अंदरि डॉक्टर साहब जी क्लिनिक आहे। जीअं ज़मीन ताज़ो डॉक्टर साहब क्लिनिक शिफ्ट कई आहे, जंहिंजे करे हुते ॿाहिरि बोर्ड न हूंदो, लेकिन डॉक्टर साहब जी क्लिनिक जे भरिसां थंबो ज़रूरु लॻियल आहे। उनखां पोइ मुंहिंजे ख़्याल में डॉक्टर साहब जी क्लिनिक खां पोइ जेको आहे सर उते जेको आहे गाह जी पीढ़ी आहे न, वॾी हिकिड़ी गाह जी पीढ़ी उते आहे ऐं ॿ स्टोर गॾो गॾु आहिनि, उते डॉक्टर साहिब जी क्लिनिक आहे। समिन तव्हांखे ॾुखियाई त कान थींदी, जेके असांजा परे खां असांजा भाइर असांजूं भेनरूं असांजा बुज़ुर्ग अचनि था, उहे डॉक्टर साहिब ॾे कॉल करे ऐं पुछी सघनि था। डॉक्टर साहिब तरफ़ हलूं था ऐं उन्हनि खां मालूमात वठूं था। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहिब।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: डॉक्टर साहिब कहिड़ा आहिनि नवांजा?
1: अलहमदुल्ला।
0: डॉक्टर साहिब पहिरीं त मुबारकबाद ॾियूं तव्हां क्लिनिक पंहिंजी शिफ्ट कई आहे पंहिंजे ॾाॾे वरी पुराणी क्लिनिक ते, ऐं हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक जे हवाले सां अॼु को अवांजो टॉपिक छा हूंदो असांजे सामान जे लाइ? सर
1: बिल्कुलु सामान जे लाइ टॉपिक हूंदो, पर सभिनी खे इहो ई ॿुधाईंदासीं त जेका असांजी पुराणी अस्पताल हुई, पुराणी क्लिनिक हुई ॾाॾे जे टाइम सां, उन क्लिनिक साॻी जॻह ते हली वियासीं। उनजी मेन वजह इहा हुई त कुझु जेका पेशंट्स आया हुआ असांजा इन महीने पोएं महीने, उन्हनि जी शिकायतूं असां वटि जाम हुयूं, त साईं इहो रस्तो असांखे उबदो थो पए ऐं अचण वञण में ॾुखाई थिए पई, तव्हां शहर वारे पासे अचो, त इन करे असां सोचियोसीं त साॻी जॻह ते वञूं त जंहिंसां हम पेशंट अचनि पिया या जेका बि असांखे ॿुधनि पिया उहे अचनि पिया त उन्हनि खे असां आसानी सां मिली सघूं। छो त स्टेशन रोड ते तमामु घणा डॉक्टर्स वेठा आहिनि, स्टोर्स वारा वेठा आहिनि, त उन्हनि में असांखे ॻोल्हण तव्हांजे लाइ थोरो ॾुखियो ज़रूरु थी सघे थो। छो त हींअर असां हींअर शिफ्ट कयूं पिया, उतां खां सॼो सामान खणी शिफ्ट थिए पियो, त उनजे करे अञा पेनाफ्लेक्स वग़ैरह बोर्ड वग़ैरह बि कोन लॻानि त अञा तव्हांखे ॾुखाई थी सघे थी, त उनजे लाइ असां ईअं सम्झूं जे लाइ पुराणी जेका असांजी हस्पताल हुई उन साॻी जॻह ते, उहा ई साॻी हस्पताल, उहा ई साॻी जॻह असां साॻा उन जॻह ते अव्हांखे मिलंदासीं। किथां बि अचो पिया ऐं यादि रखो अव्हांखे जेको आहे असांजी पुराणी क्लिनिक जो पतो घणनि खे त इहा ख़बर हूंदी आहे असांजी क्लिनिक आहे कहिड़ी जॻह ते। निम जो वण लॻल अथई, जीअं सलीम साहिबु चयो त ॿ स्टोर गॾु आहिनि, निम जो वण जी निशानी मां ॾियां पियो, जीअं खो त घोठ वारा जन उन्हनि खे इहा निशानियूं पकियूं हूंदियूं आहिनि। नवाब शाह मोड़ खां जीअं अॻिते ईंदा हो निम जो वण लॻो पियो हूंदो, हिन पासे निम जो वणु आहे, हिन पासे मुंहिंजी आम्हूं साम्हूं आहियूं असां। नंढो दर लॻल हूंदो, स्टोर भर में हूंदो, दर भर में हूंदो, उन दर जे अंदरि असांजी हस्पताल आहे, क्लिनिक आहे। हुन खां पर ऐं ॿिन्हिनि स्टोरनि जे विच में असांजो दर हूंदो, घिटीअ जे कुंड ते हूंदासीं, ऐं उन खां अलावा गाह जी पीढ़ी माना इहे सभु शयूं हुते अव्हांखे मिलंदियूं। वधीक इहो आहे त अव्हां हिते पहुची विया आहियो, अव्हां कॉल कंदव, मुंहिंजे हिसाब में कॉल बि न कंदव, साम्हूं ई तव्हांखे असां पाण ॾिसण में अची वेंदा, जीअं दर जे साम्हूं ॾिसंदव असां तव्हांखे ॾिसण में अची वेंदासीं। परेशान न थीजो, जीअं नवाब शाह मोड़ खां ईंदव स्टेशन रोड वारे पासे, अच्छा नवाब शाह मोड़ खां जीअं तव्हां अटन ॾींदव त नवाब शाह लाइ वेंदव, नवाब शाह न आहे वञिणो, असांखे नवाब शाह मोड़ ते अची स्टेशन रोड ते अचिणो आहे, स्टेशन रोड ते अची निम जो वण गोल जो उतां तव्हांखे साम्हूं पहुची वियो मूंखे कॉल कंदव, अव्हांखे साम्हूं ई असां ॾिसण में अची वेंदासीं। जीअं निम वारे वण वटि पहुची विया हुते स्टोर आहे, स्टोर आहे चवंदा बाबा हाजी नायत क्लिनिक किथे आहे, ॿुधंदा साम्हूं क्लिनिक अथसि। ऐं सामिन इहा शिफ्टिंग करण जी वजूहात तव्हांखे ॿुधाइण जो मक़सदु इहो हो त घणाई पेशंट जेका हुआ अचनि त साईं हितां खां असांखे अचण ऐं वञण में तमामु ॾुखाई आहे, ऐं हींअर गर्मियूं बि जाम आहिनि त अचणु वञणु तमामु घणी परेशानी थिए थी। इन वजह सां असां चयो जेको पेशंट परेशान थी असां वटि अचे, अञा असां हुनखे परेशान कयो, हुन लाइ बहितरु आहे त हुनजे लाइ सवलो बस हुजे, सवली जॻह हुजे जितां सवला माण्हू अची सघनि ऐं सवला हलिया वञा, इन करे असां क्लिनिक खे वापसि उन जॻह ते खणी आयासीं। अॼु के प्रोग्राम में अव्हांखे ज़रूरु ॿुधाईंदासीं त क्लिनिक जो नालो सकरण होम्योपैथी क्लिनिक न आहे, हाजी इनायत होम्योपैथी क्लिनिक आहे। हुनजी वजह इहा आहे त असां वटि जेका हेल्थ केयर कमीशन हूंदी आहे उनमें रजिस्टर थींदियूं आहिनि क्लिनिकूं, त जो बि डॉक्टर्स हूंदा आहिनि उहा पंहिंजी क्लिनिक हेल्थ केयर कमीशन खां रजिस्टर कराईंदा आहिनि। उन वजह सां असां इन जो नालो सकरण होम्योपैथी क्लिनिक नथा रखी सघूं, छो त हीअ जॻह इहा क्लिनिक हाजी इनायत होम्योपैथी क्लिनिक जे नाले सां रजिस्टर थियल आहे, त इन करे इन जो नालो असांखे हाजी इनायत रखो पियो, ऐं हुन सां गॾोगॾु इहो असांजो पुराणो नालो आहे, दादे जो नालो आहे, त उहो असां इन करे यादि रखिजो त सकरण होम्योपैथी क्लिनिक ख़तमु न थी आहे, उहा हिन जॻह ते अची वई आहे। डॉक्टर साॻो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत अवां सां गॾु साॻो डॉक्टर होॾां हो, साॻो डॉक्टर हेॾां ऐं साॻो हितां मिलंदो, ऐं इन खां बदिरां गर्मियूं आहिनि त असां इन करे कोशिशि कई थी त 5 खां 6 वॻे ताणी टाइम रखूं था, छो त माण्हू 2 खां वठी 4 वॻे ताणी गर्मी तमामु घणी हूंदी आहे, 4 वॻे ॻोठा निकिता त मज़े सां असां वटि पुॼी सघनि था, बाक़ी निकिरो पिया 4 वॻे निकिरो पिया 5 वॻे निकिरो पिया, असांखे कॉल करे नंबर पंहिंजो लिखाए छॾिजो, छो त अव्हां जेसिताईं न पुॼंदो तेसिताईं असां अव्हांजो इंतज़ारु मुलाकात ज़रूर कंदासूं। असां देर नथा कयूं, हलूं था हींअर पंहिंजे प्रोग्राम में टॉपिक जी तरफ़, छो त टॉपिक असांखे ज़रूरु करिणो आहे। त अॼु के प्रोग्राम में जेका बीमारी असां रखूं था उहा इहे रखूं था, गर्मी गर्मी गर्मी। कुझु ॾींहं थिया न त तमामु घणी गर्मी थी, एतिरी क़दुरु गर्मी थी त असां पाण ई गर्मी में अची वियासीं। त हिन गर्मीअ में जेको असां कयो गर्मी खां बचण जे लाइ, उहा तव्हां बि करे सघो था। असां इहो कयोसीं त शरबत जेका आहिनि खाधा उहा इस्तेमालु कयोसीं। लस्सी आहे उहा इस्तेमालु, लस्सी असांजे घरनि में सभिनी वटि आहे, कोठ में उहा इस्तेमालु करे सघो था। अवां लस्सी अवां जे लाइ फ़ाइदेमंद आहे, अवां जी सिहत जे लाइ फ़ाइदेमंद आहे, गर्मी खे घटि करे थी। ऐं उन खां अलावा फारवा हलनि पिया, फारवनि जो जूस अवां इस्तेमालु करे सघो था। इहो अवांजे जिस्म में, मादे में, जिगर में गर्माइश खे घटि कंदो आहे। छांई हले पई, इहो छांई बि अवां इस्तेमालु कयो, इन सां तव्हांजे जिस्म में जेको पाणी जी कमी थिए थी इहो पूरो कंदो आहे। उन खां अलावा कमर जो रस आहे उहा पासनि में शहर में हेॾां मिले थो, बोतल ऐं जूस पीअण खां बहितर अवां कमर जो रस पी वठो। इहा अवांजे लाइ मादे में, जिगर में, गुर्दनि ते, मसाने जे गर्माइश जे लाइ तमामु बहितरीन शइ आहे। पाणी आहे उहा पी सघो था, पर गर्मीअ में पाणी वणे थो हिकिड़ो गिलास, वध में वधि ॿ गिलास, पर इहा जूस वग़ैरह आहिनि त माण्हू इन खे घणो इस्तेमालु करे सघे थो। गर्मियुनि में जेमहिल असां इहा ॿ टे ॾींहं गर्मी थियूं आहे, जेको कमकार थियो, गर्मी तमामु घणी थी, त असां बि सिर्फ़ु इहा ई शयूं इस्तेमालु कयोसीं। चांहि जेका आहे उहा असां घटि करे छॾी तमामु, सुबुह जो इस्तेमालु कयो, उन खां पोइ असां चांहि पीअणु बंदि करे छॾी। असां डॉक्टर थी, असां इन्हनि शयुनि खे इस्तेमालु कयोसीं गर्मी खां बचण जे लाइ, अवां बि इस्तेमालु करे सघोसि था। अच्छा, हिन में हिकिड़ी शइ ख़्यालु कजो, जेका ब्लड प्रेशर वारा आहिनि उहा लूण जो इस्तेमालु न कंदा, जेका शुगर वारा पेशेंट आहिनि उहा खंड जो इस्तेमालु न कंदा। ऐं इन खां अलावा हिकिड़ी ॿी शइ, गर्मीअ में अवां गर्मी, तेज़ गर्मी थिए पई, उन में न निकिरो, मजबूरी आहे, निकिरणो थो पए, अवां मथे ते टुवाल ज़रूरु ॿधो। कंहिं जॻह ते पहुची था वञो त उन खां पाइण ते ॿ टे मिंट न, पंज ॾह मिंट अवां कंहिं पखे जे हेठि पियो, पघर आहे त जीअं तव्हां ईंदव पघर तव्हांखे ज़रूरु ईंदो, पघर सुकी पए त सम्झो तव्हांजो कमु थी वियो। उन खां बाद में पाणी, जूस विझी सघो था यकदमि, इहा शइ नाहे खणी, इहा शइ यकदमि कंदव तव्हांजो ब्लड प्रेशर किरी पवंदो, अवांजो जिस्म ईअं थी वेंदो, तव्हां पाण सम्झी वेंदो त हाणे मूंखे थिए छा पियो। त इन करे इन शइ जो बि एहतियात रखिजो। स्कूल वारा ॿार ज़रूरु खे एहतियात कनि, छो त हींअर स्कूलनि जी मोकल नथी आहे। मुंहिंजे हिसाब में 22-23 मई ते मोकलूं मिलंदियूं गर्मीअ जूं, त हाली जेका ॾींहं आहिनि 7-8 ॾींहं आहिनि, इन्हनि में ॿारनि खे जेॾीमहिल स्कूल खां अचनि जूता लाहे छॾियो, मथां टोपी पाती आहे उहा लाहे छॾियो, बैग लाहे छॾियो, ऐं शर्ट पातल आहे उहो बि तव्हां लाहे छॾियो। ऐं जेका इहा शइ लाइन खां उनखे सुकून सां वेहणु ॾियो। पोइ पाणी, जूस पाणी खां बहितर आहे उन टाइम ते अवां जेको मां लिमकोल ठाहिणु अवांखे सेखारियो हो, उन जो इस्तेमालु करायो छोकिरे खे। भई गर्मी में आयो आहे त उनखे जेको लिमकोल मूं ठाहे तव्हांखे सेखारियो, त हिकिड़ो चमचो लूण जो ऐं 4 चमचा खंड जा, हिकिड़ो लीमो या नारगी, इहा शइ हुन में मिलाए मिक्स करे छॾिजो। 4 गिलास ताणी पाणी हुजे, मिक्स करे ॿारनि खे पीआरियो। इहो बहितरीन टॉनिक आहे, बहितरीन शरबत आहे, जेको अवांजे जिस्म में पाणी, लिमकियात घटि थी वई आहे, शुगर घटि थी वई आहे, ब्लड प्रेशर घटि थिए पियो, उन्हनि सभिनी शयुनि खे बराबर करे छॾिणो। हिन खां बाद में विञारे छॾियो, पोइ कपिड़ा मटाए छॾियो। पर यादि रहे, टोपी पातल आहे उहा लाहे छॾिजो, बैग आहे उहो लाहे छॾिजो, जूता लाहे छॾिजो। इन्हनि सां फ़ाइदो थींदो त जिस्म में हवा जेका उहा लॻणु शुरू थींदी। अच्छा, छो हवा छो लॻंदी? साईं, मथे खे हवा लॻंदी, पेरनि में हवा लॻंदी, इहा बहितरीन इहा जॻहियूं जेका आहिनि उहा जॻहियूं आहिनि जंहिंसां हवा असांजे जिस्म खे लॻे थी, बाक़ी ॿिया जॻहियूं कम जी कोन्हनि। त विञारो न ॿारनि खे गर्मी में अचनि स्कूल में अचनि, न पाणी उनखे न पीआरियो, गर्मी में उनखे न विहारियो, पखे जे हेठि विहारे छॾियो, जिते हवा आहे उते विहारे छॾियो। तव्हां 5-10 मिंट वेहे सुकून वटि, पोइ मां पाणी वाणी खणी थो अचां, पोइ उनखे पाणी, इहा शयूं घर थी वञूं। अच्छा, स्कूल खां अचनि पाणी बि मूं ब्रेक सां तव्हांखे ॾियो आहे त यकदमि न पीआरिजो, त मानी बि यकदमि न ॾिजो, थोरो वक़फ़ो ॾेई पोइ कजो। ऐं गर्मीअ में त असां डॉक्टर थी, असां छा कयोसीं त जेका मंझंदि असां मानी खाईंदा आहियूं न, उनजी जेका तव्हां असांखे असां छा सां मानी खाधी उहा सोचे हैरान थी पवंदव, छो त असां डॉक्टर बि तव्हांजे ज़हन में इहो न थिए असां छेला खाईंदव न। गर्मीअ में असां छा कयोसीं त जेमहिल मंझंदि जी मानी आई न, असां बसर, लस्सी या अंबड़ी आई हुयूं त उनखे चटणी करे उहा शइ उन सां मानी खाधी, लस्सी जो रुख पीती मानी खाधी, इहा शइ असां इस्तेमालु कई इन गर्मीअ में। या दही बड़ा हूंदा आहिनि जेका दही खां ठहंदा आहिनि, या अहिड़ी शयूं असां इस्तेमालु कयूं, भाॼी न खाधी, वजह त गर्मी में अचूं पिया, इहा शयूं खाईंदासीं रांदो ख़राबु थींदासीं, इहा शयूं इस्तेमालु कंदो, इहा हल्को खाधो आहे। ऐं मूं त हिकिड़ो ॾींहुं मूंखे यादि आहे त 2-3 ॾींहं अॻु में तमामु घणी गर्मी थी, माना ईअं सम्झो सूमरु वारे ॾींहुं, जुमो सूमर वाली तमाम घनी गर्मी थी तो इस्तेमाल चावर उनमें मूंग की दार पचक विझी वह चावर मत दही विझ यो खाधो मंझंद जो गर्मी वजह छा है गर्मी तमाम घनी आ मानी गोश्त मुर्गियों ये सब छा गरमाइश बाहर गर्मी अंदर में तुम गर्मी विझो तो तबियत खराब थी इन कर इन मौसम में हल्के खाधो पीतो तमाम बेहतरीन शे बाहर गर्मी आतरी खुराक इस्तेमाल कर चावर एतरा को ये हजम जल्दी थन्दा तो वह तो मादे के भी नुकसान न गर्मी भी न लगंदी ए पेट भी भरजी वो ये शो अवज बेहतरन अवं ये शूँ इस्तेमाल कर सो ये ना है तो को पैसे वो गरीब बाबा पानी सेहत पानी आज पेट पानो आ पान खाए पान के बीमार करने का बेहतर आ तो पा इन शे छे दूस लाइफ के पा जिंदगी के सही गुजार ये तो पा ये इस्तेमाल कर डॉक्टर वो वो इनका बेहतर अस ये शो इस्तेमाल कर डॉक्टर वो वन की जरूरत न पे अच्छा समीन रहा भी तकलीफ आ बीमारी आ जी का ब्लड प्रेशर आ शुगर है या फालिज है जख्म पुराना खत्म नजर खारिश है रत गड़ियों या मादे जो का तकलीफ है मादे जो को मसलो है तो उन सभी जो इलाज असि क्लिनिक थी सकेस तो उनका अलावा बे औलाद वा जन उन्होंने तो हिंसर एडवाइस कस परेशान हरगिज न थो या डॉक्टर डॉक्टरी या चक्कर अवं न कर अवज बेहतरीन इलाज जो है वह होम्योपैथिक में आए उन वजह चाहे तो पा परेशान होस इन इन बारे में अस पेशेंट आन सही बे औलाद वा उन्होंने तो उन्होंने सिर्फ यह चाहिए तुम जी तकलीफों मुख्य लिखा छो दवा इलाज मान कर जवाब दिनों लिस्ट मुझे तमाम घनी थी वो तो परेशान थे तो मुझे हाँ इन बारे में पढ़नो लाजमी आए तो इन बारे में स्टडी कई तो असो होम्योपैथिक वा दवाओं ऐसी पा परेशान थियस तो जै औरत से जो मसलो उनकी दवा तो असो मौजूद है पेशेंट के छो न पे दिया तो इन मुताबिक अवं जेका बे औलाद वारा आयो मर्द तोड़े औरत पई उन्हें बिन्हीं जो इलाज थी सके तो जेडी मल इनमें खोड़ अड़ी अड़ी शन जसाजा डॉक्टर्स डॉक्टर असो बुधाइन को अजो के प्रोग्राम में मुझे कोशिश रही तो उन नंदी नंदी शुदाया छो तो वही शफ एम से बुधा मजो न तो अचे तो इन कर कुछ अड़ी अड़ी शवं के बुधा तो जैका अवज में जरूर कहीं ना कहीं यह शून अस मर्द उनमें मुख्यों जरासीम चवंदा जरासीम कड़ोस पासे में जरासीम जरूरत ही कान्ने का उ जरासीम वाली गाल सिर्फ अवं के परेशान करें इन अलावा भी खोड़ शूं जिनकी कमी अस औलाद नो थे लेडीज़ आ लेडीज में चवंदा एलईडी जहाँ डॉक्टरनी बाबा माहवारी सही को माहवारी के तुम छो इन अलावा भी कई शूं जो अस सही कर औलाद थी सके माहवारी सही थी नी और मर्द जो जरासीम सही थी नी औलाद इनमें खोड़ बया शूं अस होम्योपैथिक वेमल अस किताब खोली अस पा चर्चा थी वैसे यार इं शो भी ऐसो है या भाई खोड़ पेशेंट मुझे उन शा पाया हुआ यार किताब चवे भी या पेशेंट में ही शे पूरी तो इन की कमी आज कर औलाद न पी थे तो अस पेशेंट मौजूद अस हाँ उन्होंने सभी चुनाव तुम परेशान न थो पे टेस्टू रिपोर्ट्स गुड़ अचो इनशाला अस डॉक्टर जो कम यो तो जेका कमी जैमें भी है अस उन कमी के पूरा कदासूँ छो तो अवे खबर आ शिफा दे जात अला की औलाद देने की जात अला की छोकरो दे छोकरी दे उन कम है असो कम अवजो कम सिर्फ इो ही है हीलो वसीलो हीलो वसीलो चाहे तो जेका जैमें कमी आ पूरा कर दवाओं दे असो कम आ खाधे इस्तेमाल कर अवजो कम जी मल नसीब थो अची पौलाद बाकी परेशान तो अल्लाह इनशाला अवं जरूर खुशखबरी बुधा असमें प्रोग्राम में कुछ गाल गर्मी के हवा से हुई कुछ अवज बे औलादी के हवा से कुछ शूँ रखी हुए सामू उन अलावा पेशेंट जो ना असल इंदा ओ पीढ़ी में उन पास सकन वाली क्लिनिक आया हा हाँ वो एडा ही तो उन सकन वाली क्लिनिक पेशेंट जो रुझान हो वो माशाल्लाह तमाम बेहतरीन हो ओ पीढ़ी माशाल्लाह तमाम सुठी हुई असानी उन अलावा केस अस तमाम एतरा केस हुआ था एलोपैथिक वे जो दवाओं उन्होंने बस थी वही असि होम्योपैथिक वाली दवाओं उन्होंने तमाम घो बेहतरीन रिजल्ट दिनों उनमें वजह छा तो असानी होम्योपैथिक की फर्स्ट में फर्स्ट प्योरिटी मन फर्स्ट में फर्स्ट उन चवण यो है सेहत सेहत ज़िंदगी खुशहाल, सेहत खुशहाल, पेशेंट खुशहाल, होम्योपैथी खुशहाल। सभी का पैदा यो हों ये कुदरती इलाज आ, कुदरती तरीके से दवाओं थन्दियन, कुदरती शेवन का दवाओं थन्दियन। इन कर इनमें साइड इफेक्ट नुकसान वाली का गाल आहे को इनके तुम जहन में कदी छो। बो ये चवन त असि पेरी प्योरिटी यहाँ है तो अस पेशेंट जो उनके सेहत थे, उनकी खुशहाली थे, सेहतमंद थे पेशेंट। तो उन परेशान न थो। होम्योपैथिक जो सभी का पेरी पेरी किरदार यो है तो पेशेंट की सेहत बहाल थे। सेहत बहाल थी तो वह बीमारियों पाँ पान गुम थी वो। सेहत बहाल करने अस मेडिसन्स दवाओं 100% रिजल्ट वाली कें भी साइड इफेक्ट्स का पाक कन तो परेशान नाता सको। होम्योपैथिक दवा का अवे इनशाला फायद जरूर मिल। बहरहाल सुभा छंछर वरी आचर बई डी अस फ्री रखो है चेकअप जो अस रखा उनके अलावा जो फीस है मशीन की वह अस अद कह हर छंछर आचर यो अस रूट जो हल पो। बाकी जी हाँ हेदा शिफ्टिंग थी तो इनमें थी सके अस छंछर आचर फ्री चेकअप वो यो रुझान असो खत्म थी सके तो उन वजह है तो कुछ मामला अड़ा तो जैसे कर छंछर आचर फ्री चेकअप अस बंद करो पव। बहरहाल इंशाल्लाह असांजी टीम जेका है उहा इन कम ते लॻल आहे त इहा छंछर आचर जेका असांजो यको हले पियो इनखे बंदि न कयूं। बाकर दुआ कयो त इहो असांजो कमु थी बंदि त हेॾां जा जेका मामला अथनि जेका हालात उन्हनि खे ज़रूरु ॾिसणो। कुझु शयूं अहिड़ियूं आहिनि जेका पर्सनल आहिनि जंहिंजे बारे में असां नथा चई सघूं त कंहिंजी दिलि ज़ारे थी सघे थी। इन जे करे असांखे छंछर ऐं आचर खे असांखे फ्री चेकअप खे हटाइणो थो पए। बाकी मां मुंहिंजी पंहिंजी पूरी कोशिशि कंदुसि त इहा छंछर आचर जेको मुंहिंजो फ्री हले पियो 4 साल खां इहो हले इनखे मां बंदि न कंदुसि। बाक़ी अलाह मालिक आहे।
0: जीअं समीन अवां ॿुधो पिया जीअं सकल नवाब शाह एफ एम 90.8 जे लाइव स्टूडियो मां प्रोग्राम सिहत जो राज़ होम्योपैथिक सां। जीअं समीन डॉक्टर साहिब जी हाणे क्लिनिक आहे। हा जी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक जे नाले सां डॉक्टर साहिब जी क्लिनिक जी एड्रेस स्टेशन रोड सकरण। हा जी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकरण। डॉक्टर साहब जी वेहण जी टाइमिंग सुबुह जो 9 खां शाम 6 वॻे ताईं। जीअं समीन डॉक्टर साहब सुबुह जो 9 खां शाम 6 वॻे ते मौजूदु हूंदा क्लिनिक ते ऐं जुमे वारे ॾींहुं बि काई मोकल कान्हे का। जुमे वारे ॾींहुं बि डॉक्टर साहब मंझंदि 12 वॻे ताईं मौजूदु हूंदा। हर छंछर आचर ते बि जीअं डॉक्टर साहब मौजूदु हूंदा आहिनि ईअं ई मौजूदु हूंदा, यानी सुबुह जो 9 खां शाम 6 वॻे ताईं। पर हिन मां इहो नोट कराईंदो हलां त डॉक्टर साहब वटि मेडिकल स्टोर ॿाहिरि लॻियल आहे। उहो डॉक्टर साहब जी क्लिनिक जी निशानी आहे। उतां ई नंढिड़ो दरवाज़ो आहे, एॾो नंढो त कोन्हे, मतिलबु मेडिकल स्टोर सां गॾो गॾु साॼे पासे बि मेडिकल स्टोर आहे, खाॿे पासे बि मेडिकल स्टोर आहे। अंदरि डॉक्टर साहब ॾे क्लिनिक जो दरवाज़ो आहे, ॿाहिरि बोर्ड हूंदो, यानी सुभाणे त न हूंदो पर आईंदा ॾींहंनि में बोर्ड मौजूदु हूंदो ऐं डॉक्टर साहब ॾे तव्हां कॉल करे वधीक मालूमात वठी सघो था। समिन छंछर आचर ते जेको सकरण में पथे क्लिनिक ते फ्री चेकअप हूंदो उहो हिते न हूंदो, छो जो क्लिनिक स्विच कई वई आहे उते। अजय समीन नई क्लिनिक नओं सेटअप आहे त उते जेको आहे त फ्री चेकअप जो फ़िलहालु कोई सिस्टम कोन्हे। आईंदा हली अॻिते इन बारे में डिस्कस करे ऐं पोइ सोचियो वेंदो। समीन डॉक्टर साहब तव्हांजे लाइ फ्री ॾींहुं ज़रूरु रखंदा आहिनि त उन बारे में सोचियो ज़रूरु वेंदो, पर हिन वक़्तु जेको सुभाणे छंछर आचर आहे उन में कोई फ्री चेकअप कोन्हे को। तव्हां ईंदा पंहिंजो चेकअप फीस ॾेई पंहिंजो इलाजु कराईंदा। जीअं समीन होम्योपैथिक तरीक़े इलाज में पंहिंजो इलाजु करायो, पाण खे सिहतमंद बणायो।

0: डॉक्टर साहब हर बीमारी जो माहिर मशहूर डॉक्टर है तवा होम्योपैथिक तरीका इलाज सा पंजो इलाज कराए सको था ए डॉक्टर साहब का दवा वठी सको था सामे वक्त जो एहसास प्रोग्राम से जी गाल जो भी वक्त पहुंचे तो पंजो पुजानी थी जले भी दुआ लायत खणो पंजे मेजबान सलीम अहमद सरगण के दौर में जरूर याद रखजो जिंदगी अगर साथ रेनो बे प्रोग्राम में तो सवा सागद तेसी मुखे दिदा इजाजत सदाई गद अल्लाह वाही अलग के बान जेडा पैर तेडा खैरो खैर
1: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान जी बहरी नाकाबंदी खत्म करण जो ऐलान करे छो। ट्रंप पंहिंजे बयान में चयो त ईरान जी बहरी नाकाबंदी खत्म कई आहे। पातल जहाज हाणे घर वापसी जो अमल शुरू करे सघनि था। आबना हरमुस खे बिना टोल जे फौरी तौर खोलणो पवंदो। सिचुएशन रूम इजलास में ईरान बाबति हतमी फैसलो कयो वेंदो। ईरान खे कॾहिं बि एटमी हथियार न रखण ते राज़ी थियणो पवंदो। ईरान जे न्यूक्लियर डस्ट जबलनि जे हेठि ऊंडाई में दफ़ल थियल आहे। अमरीका हिन खे कटी तबाह करे छॾींदो। इहो कम एटमी तवानाई एजेंसी जे सहकार सां कयो वेंदो। आबना हरमुस में कुझु बारूदी सुरंगूं तबाह कयूं वयूं आहिनि ऐं रहिजी वियल सुरंगनि खे बि तबाह कयो वेंदो।

महांगाई सटियल अवाम के रिलीफ, हुकूमत पेट्रोल ए डीजल की फी लीटर रक में 22 रुपया घटताई जो ऐलान कर छो। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस तरफा जारी कल पधराई मूजिब पेट्रोल ए डीजल की फी लीटर रक में 22 रुपया घटताई जो फैसलो किया है। वज़ीर-ए-आज़म अवाम के रिलीफ दियण वाली तरजीहन में शामिल है। गुजरियल हफ्ते भी पेट्रोलियम शेयर की कीमतन में घटताई कर अवाम के रिलीफ फराहम किया हो। वफाकी हुकूमत सख्त तरीन हालत बावजूद अवाम के रिलीफ दियण लाइ कदम खणी रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान से माहदे जो मुसवदो इसराइल समेत इतिहादी मुल्क माने छो। बरतानवी अखबार काचन मूजिब मुसवदे में ईरान के सदस जब्त थियल 12,000 अरब डॉलर के असासन की पहुंच डी वी। मुसवदे में अपना हरमुस मामूल जिया बहाल करण की तजवीज भी शामिल। सदर मसूद पशिक्यान पारा मुहिदे ताईं पहुंचण ते पाकिस्तान की कोशिशन की वाखाण। मसूद पशिक्यान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से लिखो है मुहिदे बाबत पाकिस्तान की इसराइती कोशिशन से थोराए तो आया। इंसानी हमदर्दी वे मौकफ से मलेशिया मुहिदे बाबत पाकिस्तान की कोशिशन की वाखाण। अमरीका के नाणे वे वजीर है सदर ट्रंप जो रेड लाइन्स वाजह हैं। ईरान के रचाव थियल यूरेनियम तहत करणो पव अपना हरमुस खोलो पव। सदर ट्रंप ईरान मामले से पैंती रेड लाइन्स का बाहर का भी डील न कंदो। ओमानी हुकूमत खातरी कराई है अपना हरमुस में टोल टैक्स जो को भी मनसूबो ना। ईरानी पार्लिमानी स्पीकर बाकर कालिबाफ है ईरान के अमरीका के कें भी किस्म की जमानतन वायदन से एतमाद ना है। ईरान रुगो अमली कदम के अहमियत दी है गालियन में एतमाद की खोट बुनियादी मसलो है।

अमरीकी दौरे ते वाशिंगटन पहुतल नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार जी अमरीकी परडे॒ही वज़ीर मार्को रूबियो सां अहम मुलाक़ात वितरपन लागापन ऐं ख़ासि तौर ख़िते जी सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल्हि।

टे महीना अॻु शुरू कयल जंग जी क़ीमत अवाम अदा करे रहियो आहे। जंग हाणे ख़तम थियणु घुर्जे। न्यूयॉर्क जे मेयर ज़ोहरान ममदानी सोशल मीडिया ते बयान में चयो आहे त कांग्रेस जी मंज़ूरी खां सवाइ शुरू थियल जंग में अवाम जी बजट मुतासिर थी रही आहे। जंग सबबि अमरीका में पेट्रोल ऐं ॿियनि शयुनि जे अघनि में वाधि थी।

صدر ऐं वज़ीर आज़म पारां गडि॒यल क़ौमनि जे अमन दस्तनि जे आलमी ॾींहं ते पैगाम। सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो आहे त आलमी अमन लाइ क़ुर्बानी ॾींदड़ 183 पाकिस्तानी अहलकारनि जी बहादुरी खे सलाम पेश कयूं था। पाकिस्तान 60 वरियनि खां यूएन अमन मिशन में नुमाया किरदार अदा करे रहियो आहे। कश्मीरियुनि जी उमेदनि मूजिब कश्मीर मसइलो हल कयो वञे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो त हीउ ॾींहुं सॼी दुनिया में इंसाननि जे तहफ़ुज़ लाइ सियासी अज़म ऐं माली मुआवन जी अहमियत उजागर करण लाइ रखियो वियो आहे। क़ौमी फ़ख़्र जी ॻाल्हि आहे त पाकिस्तान गडि॒यल क़ौमी जे अमन मिशन में पंजो वॾो हिसो आहे। रियासती ऐं गैर रियासती जंगनि जा तरीक़ा तब्दील थी चुका। अमन दस्ता हाइब्रिड ख़तरनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। आलमी अमन लाइ जानियूं क़ुर्बान कंदड़ ब्लू हेलमेट्स खे पाकिस्तान पारां भेटा पेश। ISPR पंहिंजी पधराई में ॼाणायो आहे त आलमी अमन लाइ मुसलसिल ऐं इज्तमाही क़ुर्बानी जी ज़रूरत आहे। 237,000 पाकिस्तानी अमन मिशन में पंहिंजूं ख़िदमतूं सरअंजाम ॾेई चुका आहिनि। यूएन अमन मिशन में 183 बहादुर पाकिस्तानी अहलकार शहीद थिया। साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल प्रोपेगेंडा ऐं मौसमियाती तब्दीलियूं अमन लाइ नवां चैलेंजेस बणिजी चुकियूं आहिनि। पाकिस्तान जदीद इंटेलिजेंस ट्रेनिंग ऐं क्लाइमेट फ्रेमवर्क ज़रिए अमन में सीड़पकारी करे रहियो आहे।

सदर आसिफ अली सरदारी सेनेट ऐं क़ौमी असेंबली जा बजट इजलास 5 जून ते तलब करे वरिता। क़ौमी असेंबली जो इजलास शाम 5 वॻे ऐं सेनेट जो इजलास शाम 6 वॻे थींदो। इजलास में ईंदड़ बजट ते बहस थींदो। मीरपुर ख़ासि तालिमी बोर्ड करप्शन केस में गिरफ़्तार ठेकेदार जा छिरकाईंदड़ इंकशाफ़। ठेकेदार नईम पुरी चयो आहे त मनपसंदि इम्तिहानी मर्कज़ लॻाए शागिर्दनि ऐं शागिर्दनि खे कापी कराई वेंदी हुई। रिश्वत एवज़ मैट्रिक खां वठी इंटर ताईं A1 ऐं A ग्रेड ॾियारिया वेंदा हुआ। मैट्रिक में नंबर वधाइण लाइ 50 खां 60 हज़ार ऐं इंटर लाइ 80 खां 90 हज़ार रुपया रेट मुक़रर हो। 1000 शागिर्दनि जा नंबर रक़म वठी वधाया। रक़म लिफ़ाफ़नि में बंदि करे अनवर अलीम खे ॾींदो हुयसि। 2023 में बिल्डिंग खाते जे कम जो टीको DC पी ए ख़ालिद बाफ़त 1 करोड़ रुपियनि में वरितो।

पी शादी का रोकण ते जवाबदार मुबैना तौर पंहिंजी ॻाल्हि खे ज़हर ॾेई छॾियो। औरत घटती जोगी हालत में अस्पताल मुंतकिल। दर्स रोड जी रवासण मुसमात जमीला अस्पताल में ॻाल्हाईंदे चयो त संदसि मुड़ुसु मोहम्मद जतई ॿी शादी करण पई चाहे। रोकण तां हुन मूंखे ज़बरदस्ती ज़हर पीआरियो आहे। वाई पांधी भरिसां बि साॻी क़िस्म जो वाकियो। घोट पीर बख़्श लाशारी में मुड़ुसु फ़हीम ब्रह्माणी ॿी शादी जी इजाज़त न ॾियण ते मुबैना तौर ज़ाल खे तशद जो निशानो बणाइण बाद बेटी जो पाणी पीआरे छॾियो। जहान बा वारे इलाइक़े में सगावती तकरार तां वारपाणी बिरादरी जी ॿिनि तुरियुनि में जहिड़ो फायरिंग में हिकु ॼणो साधू वारपाणी क़तल, हिकु औरत ज़ख़्मी थी पई। कश्मोर भरिसां कारे इल्ज़ाम हेठि घोठाणो क़तल, औरत ज़ख़्मी। ॻोठ लुकमान जकराणी में जवाबदार शाह बख़्श जकराणी कारे इल्ज़ाम हेठि लाल बख़्श जकराणी खे गोलियूं हणी क़तल ऐं औरत खे ज़ख़्मी करे छॾियो। सिंध में कहर जी गर्मी बरकरार। अॼु बि मुख़्तलिफ़ शहरनि में पारो 52 सेंटीग्रेड ते पहुतो। सख़्त गर्मी सबबि मुख़्तलिफ़ शहरनि में गेस्ट्रो ऐं डायरिया जी वबा में इज़ाफ़ो थी वियो।

0: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, जुकाम, दिल जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलणु, फालिज, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस: हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज,
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म करने जो ऐलान कर छो। ट्रंप पैंजे बयान में चयो त ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म कई है, फातल जहाज हाँ घर वापसी जो अमल शुरू कर सकता। आबना हरमुस के बिना टुल के फौरी तौर खोलना पवन। सिचुएशन रूम इजलास में ईरान बाबत हतमी फैसलो किया। ईरान के कदें भी एटमी हथियार न रखने से राजी थियण पवन। ईरान की न्यूक्लियर डस्ट जबलन के हेठ उनाई में दफन थियल है। अमरीका इन कड़ी तबाह कर छी। यो कम एटमी तबनाई एजेंसी के सहकार से किया। आबना हरमुस में कुछ बारूदी सुरंगू तबाह कई वही रह सुरंगन के भी तबाह किया।

सटियल अवाम के रिलीफ हुकूमत पेट्रोल और डीजल की फी लीटर रकम में बवी रुपया घटताई कर छी। पेट्रोल जो नव अग 381 रुपया 78 पैसा मुकर, डीजल जो नव अग फी लीटर 380 रुपया 78 पैसा थी। नोटिफिकेशन जारी, नव अग रात 12 वगे का लागू हुंदा। वजी अजम चयो अवाम के रिलीफ दियण अवलिन तरजीहन में शामिल है। गुजल हफ्ते भी पेट्रोलियम शयन की कीमतन में घटताई कर अवाम के रिलीफ दिनो हो। वफाकी हुकूमत सख्त हालत बावजूद अवाम के रिलीफ दियण लाइ कदम खणी पई।

अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान सां माहिदे जो मुसवदो इसराइल समेत इतिहादी मुल्कनि ॾांहुं उमाणे छॾियो। बरतानवी अख़बार गार्जियन मूजिब मसवदे में ईरान खे संदसि ज़ब्त थियल 12,000 अरब डॉलरनि जे असासनि जी पहुच ॾिनी वेंदी। मसवदे में अबनाए हुर्मुज़ मामूल जीअं बहाल करण जी तजवीज़ बि शामिल। ईरानी सदर मसूद पेज़िश्कयान पारां माहिदे ताईं पहुचण ते पाकिस्तान जी कोशिशनि जी वाखाण। मसूद पेज़िश्कयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ते लिखियो आहे त माहिदे बाबति पाकिस्तान जे इसराइती कोशिशनि ते थोरायतो आहियां। इंसानी हमदर्दी वारे मौक़िफ़ ते मलाइशिया ऐं माहिदे बाबति पाकिस्तान जी कोशिशनि जी वाखाण। अमरीका जे ॾाणे वारे वज़ीर चयो आहे त सदर ट्रंप जो रेड लाइन्स वाज़े आहिनि। ईरान खे रचाउ थियल यूरेनियम तां हथु करणो पवंदो ऐं अपनाए हरमोस खोलणो पवंदो। सदर ट्रंप ईरान मामले ते पंहिंजी रेड लाइन्स खां ॿाहिर का बि डील न कंदो। ओमानी हुकूमत ख़ातिरी कराई आहे त अपनाए हरमोस में टोल टैक्स जो को बि मनसूबो नाहे। पार्लियामानी स्पीकर बाकर कालिबाफ चयो आहे त ईरान खे अमरीका जे कंहिं बि क़िस्म जी ज़मानतनि ऐं वाइदनि ते एतमाद न आहे। ईरान रुगो अमली क़दमनि खे ई अहमियत ॾींदो आहे। ॻाल्हियुनि में एतमाद जी कोट बुनियादी मसइलो आहे। अमरीकी दौरे ते वाशिंगटन पहुतल नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जे अमरीकी परॾेही वज़ीर मार्को रूबियो सां अहम मुलाक़ात। वितरफ़ा लाॻापन ऐं ख़ासि तौर ख़िते जी सूरतयाल ते ॻाल्हि ॿोल। सदर आसिफ अली ज़रदारी सेनेट ऐं क़ौमी असेंबली जा बजट इजलास 5 जून ते तलब करे वरिता। क़ौमी असेंबली जो इजलास शाम 5 वॻे ऐं सेनेट जो इजलास शाम 6 वॻे थींदो। इजलास में ईंदड़ बजट ते बहस थींदो। ख़ासि तालीमी बोर्ड करप्शन केस में गिरफ़्तार ठेकेदार जा छिरकाईंदड़ इंकशाफ़। ठेकेदार नईम मोरी चयो आहे त मनपसंदि इम्तिहानी मर्कज़ लॻाए शागिर्दनि ऐं शागिर्दनि खे कापी कराए वेंदी हुई। रिश्वत वस मैट्रिक खां वठी इंटर ताईं A1 ऐं A ग्रेड ॾियारिया वेंदा हुआ। मैट्रिक में नंबर वधाइण लाइ 50 खां 60 हज़ार ऐं इंटर लाइ 80 खां 90 हज़ार रुपया रेट मुक़ररु हो। 1,000 शागिर्दनि जा नंबर रक़म वठी वधाया। रक़म लिफ़ाफ़नि में बंदि करे अनवर अलीम खे ॾींदो हुयसि। 2023 में बिल्डिंग खाते जे कम जो ठीको DC ऑफिस जे PA ख़ालिद मार्फत 1 करोड़ रुपियनि में वरितो। 10 लख रुपया वर्क ऑर्डर कमीशन जी बद में ऐं वधीक 11 लख रुपया पिण ॾिना। कमीशन खां सवाइ को कम नथो मिले। बलोचिस्तान मां 13 ॾींहं अॻु अगवा थियल सईद मेमण अञा ताईं बाज़ियाब न थी सघियो। संदसि बाज़ियाबी लाइ हैदराबाद में वारिसनि सियासी समाजी अॻवाननि ऐं शहरियुनि जो एहतजाजी मुज़ाहिरो। मुज़ाहिरनि चिताउ ॾींदे चयो त सिंध ऐं बलोचिस्तान हुकूमतूं सईद मेमण जी बाज़ियाबी लाइ फौरी क़दम खणनि। ॿी सूरत में एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो। जूनियर ज़ुल्फ़िकार भुट्टो लाड़काणे जे शेख ज़ैद वुमेन अस्पताल ऐं ॿारनि जी अस्पताल पहुतो। HIV में मुब्तला मरीज़नि जी अयादत जूनियर ज़ुल्फ़िकार भुट्टो लाड़काणे भरिसां ॻोठ मुला अबड़ो में HIV विघी पोत थी वियल नीगर रिहान अबड़ो जे घर पहुची वारिसनि सां बि ताज़ियत कई। पंगुबाड़ भरिसां मोटरसाइकिल पुरण जी कोशिश मज़ामत ते नौजवान ज़ख़्मी। हथियारबंद नौजवान अब्दुल रज़ाक मजीदाणो खे क़तल करे फरार थी विया। लाश अस्पताल मुंतकिल।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अव्हां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलण फालेज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 AM खां शाम 6 AM ताईं परोस जुमो 12 AM ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकरन। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
3: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो GFM 90.8।